एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि। तदनुसार 21 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर

0: राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। चिंतन

सृष्टि का चक्र भी अनोखा है। मनुष्य जन्म लेता है और समय पूरा होने पर शून्य में विलीन हो जाता है। ना जन्म मनुष्य के अधिकार में है और ना ही मृत्यु। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिसके द्वारा वह अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। पर संसार में आने के बाद वह मैं और अह के मायाजाल में उलझ जाता है। भगवान ने उसके भीतर जिस स्नेह, प्रेम व सहानुभूति के कण बिखेर दिए हैं, उन्हें भूल वह अभिमानी हो उठता है। वो भूल जाता है कि उसे जो भी मिला है प्रभु की कृपा से ही मिला है।

हे शिव शंकर भगवान, आपका गुणगान तो तीनों लोक करते हैं। चारों दिशाएं आपके गुणगान से गूंज उठती हैं।

भगवान नाम की महिमा अगाध है, अपार है, अमाप है, किंतु जरूरत है तो बस सच्चे हृदय से भगवान नाम लेने की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड का भाग 216।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओ, प्रातः 7:10 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी आज विशेष के साथ विश्व आभार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्माइजर दिवस पर। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 8:45 पर कार्यक्रम कानून की बात आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। 9:00 आप सुनेंगे कुछ गीत और 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। प्रातः 9:50 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर सुनिएगा पहाड़ों के सुर। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर कार्यक्रम महक पंजाब की आप सुनेंगे। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 सुनेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10

0: 10 मिनट पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनेगा कुछ भजन। 5:25 पर समय रहेगा कार्यक्रम युवा मंच का। 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर कार्यक्रम किसान माफ कीजिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8:00 सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 9:15 पर एक ही संगीतकार के क्रम में आज सुनिए संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों की। और रात्रि 10:00 दिल्ली हाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, दोपहर 1:00, शाम 5:00, 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, दोपहर 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज की कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितं यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जलसंपदं च दुष्यति। अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जलसुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महंतं वैषम्यं जनयति। राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणं नहि केवलं प्रशासनिक कर्तव्यं प्रत्युत सकल मानव जातेः निरपेक्षं अस्तित्व साधकमस्ति। गुजरात राज्यं संप्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति। श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते। वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति। जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 20-26 वायुसैन्याभ्यासे भारतीय वायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्धविमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्। वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तं यत् भारतीयधरायां जापानी युद्धविमानानां प्रथमप्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षासम्बन्धेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति। नवमे दिनांके आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति। कोलकाता नगरे मत्स्यपालन विभागः अद्य समीक्षा सभाम् आयोजयति। अस्यां सभायां केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंहः मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी च सहैव अध्यक्षतां विधास्यतः। पश्चिम बंगे मत्स्य संपदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि। एतेन विभिन्न योजनानां अनुपूर्विक प्रगतिः समी

0: दृश्यते तथा ही नूतनं मार्गचित्रं प्रस्तूयते। षड्चत्वारिंशत्तम शतरंज ओलंपियाड स्पर्धायां प्रज्ञानंदः गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नीदरलैंड दलं पराजितवन्तौ। अनेन भारतेन 3-1 इति अंकांतरालेन विजयः समासादितः। महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैंड देशेन पराजितम्। अवधेयं यत् संप्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 अंकैः सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते। रूस देशीय युद्ध काले आयोजितं संसदीय निर्वाचनं ह्यः समाप्तम्। निर्वाचन आयोगानुसारं 55.66% यावत् जनाः मतदानं कृतवन्तः। अमुष्मिन्नेव अवसरे यूक्रेन दलानि 1000+ ड्रोनान् अपातयन्। अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुम् उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थराष्ट्रैः सह होर्मुज़ मार्गं मोचयितुं 7 नियमैः सह सन्धिपरामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्णविनाशः, आर्थिकप्रतिबन्धः, सन्धिः च इति त्रयः विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकीबलैः सह सङ्ग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्य श्रीराममन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्यां अयोध्यायां नूतनस्वर्णयुगस्य अभ्युदयः सञ्जातः। कृतप्रयत्नेन अयोध्या पुनः एकदा वैश्विकधार्मिकपर्यटनस्य अथ सनातनधर्मस्य मुख्यकेन्द्रम् अभवत्। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयेन मन्दिरनिर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। दीपोत्सवसदृशैः भव्य आयोजनैः च अस्याः सांस्कृतिकवैभवस्य पुनरुद्धारः साक्ष्यसिद्धः अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं।
2: विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से

0: जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और NIA ने 30 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें ईरान को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या फिर समझौता करना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने मध्यस्थों के जरिए 7 शर्तें रखी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिका के कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अलर्ट यमन के हौसी गुट की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल चुका है। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekatanagar in Kevariya tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th Annual Convocation Ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahma Kumari's campaign, Spiritual Awakening for World Renewal, and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahma Kumari's Nadiad on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Chief Self-Defense Force Chief of the Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties. Department of Fisheries will organize a review meeting on development of fisheries in Kolkata today. The meeting will be co-chaired by Union Minister of Fisheries Rajiv Ranjan Singh and West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari.

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर है कार्यक्रम सुबह सुहानी के संग के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो रोजाना की ही तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज के शुभ विचार के साथ। श्रोताओं, क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोले गए शब्द हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। शांत मन से सोचना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि शांत पानी में ही आसमान साफ दिखाई देता है। आज अपने मन को शांत रखिए और प्रेम से भरे शब्द बोलिए।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देते हैं आज के दिन की। जी हाँ, आज क्या कुछ घटित हुआ 21 सितंबर के दिन। श्रोताओं, आज के दिन 21 सितंबर 1784 में अमेरिका का पहली बार दैनिक अखबार छपा था। आज ही के दिन 21 सितंबर 1942 में बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। आज ही के दिन 21 सितंबर 1966 में मिहिर सेन ने बॉस्फोरस चैनल तैरकर पार किया था। और आज ही के दिन 21 सितंबर 1977 में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। शांति सभी को प्यारी होती है। इसकी खोज में मनुष्य का अधिकांश जीवन न्यौछावर कर देता है, किंतु ये काफी निराशाजनक है कि आज इंसान दिन प्रतिदिन इस शांति से दूर होता जा रहा है। आज चारों तरफ फैले बाजारवाद ने शांति को व्यक्ति से और भी दूर कर दिया है। पृथ्वी, आकाश व सागर सभी अशांत हैं। स्वार्थ और घृणा ने मानव समाज को विखंडित कर दिया है। यूं तो विश्व शांति का संदेश हर युग और हर दौर में दिया गया, लेकिन इसको अमल में लाने वालों की संख्या बेहद कम रही है। वर्ष 1982 से शुरू होकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस

दिवस निजी और संस्थागत दोनों तौर पर मनाया जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके काम की तारीफ हो। ऐसे में विश्व आभार दिवस से अच्छा दिन और नहीं हो सकता। और कार्यक्रम में अब हम भी एक और गीत सुनेंगे। लीजिए, पहुंच रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे विश्व अल्जाइमर दिवस पर। श्रोताओ, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को कम करना है। इस दिन की शुरुआत 1994 में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। इस बीमारी का नाम जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1906 में पहली बार इसके बारे में बताया। श्रोताओ, यह एक मस्तिष्क से जुड़ा प्रगतिशील न्यूरोलॉजिस्ट विकार है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त, सोचने की क्षमता और दैनिक व्यवहार खोने लगता है। यह आमतौर पर बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता है। केवल

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे देश विदेश की खबरों की।

श्रोताओं, आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन से गुजरात के दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र की उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य की जाने की खबर सामने आई है। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हाल के उसके मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला में नया घटनाक्रम है। एशियाई गेम्स की अगर बात करें तो एशियाई गेम्स 2026 में भारत आज शूटिंग, हॉकी, कबड्डी और टेबल टेनिस सहित कई मुकाबलों में हिस्सा लेने जा रहा है। भारत ने शुरुआती दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीते।

और अब आपको जानकारी देंगे मौसम की। तो आज हिमाचल की वादियों में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। कई इलाकों में धूप खिली रहेगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। तो मौसम का आनंद लीजिए और अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ कीजिए। और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ ब्याग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबू से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
8: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
7: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
9: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
7: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की

0: खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026, by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films, and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
4: Dr. Jaishankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly will bring together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. UN Secretary General Antonio Guterres has called on world leaders to strengthen international cooperation as they gather in New York for the General Assembly. In a video message, Guterres said, "Come together for peace, dignity, justice and humanity. Only with international cooperation we can build a better world." Guterres, attending his final UN General Assembly as Secretary General,

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा का ये गीत परंपरा टंडन और संचित टंडन की आवाजों में।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म क्या सुपर कूल है हम का ये गीत सोनू निगम की आवाज में।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा।

0: कानून की बात। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विषय पर श्री सूर्य प्रकाश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर से भेंट कर रहे हैं अनुज कुमार। ये कार्यक्रम आप डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्री सूर्य प्रकाश जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय और श्रोताओं, जैसे कि आज हमारा विषय है मुफ्त शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले आपसे माननीय न्यायाधीश महोदय यही जानना चाहेंगे कि बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वह संविधान में किस प्रकार प्राप्त है।
2: देखिए अनुज जी, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा केवल सरकार की कृपा या सुविधा नहीं है, बल्कि बच्चे का एक संविधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह घोषणा करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, और इस संवैधानिक अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए संसद ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया, जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। इस कानून में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई से है।
1: जी आपसे अब जानना चाहते हैं कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से वास्तव में क्या अभिप्राय है।
2: निशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे को ऐसी कोई फीस, शुल्क या खर्च वह नहीं करना पड़े जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। दूसरी बात अनुज जी ये है कि जो अनिवार्य शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे को जबरन स्कूल भेजना सरकार का दायित्व है। इसका अर्थ है कि सरकार और स्थानीय जो हमारी अथॉरिटी है उनकी यह जिम्मेवारी है कि वह बच्चे का प्रवेश स्कूल में, उसकी उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करें। इस एक्ट के तहत यह भी प्रावधान है कि बच्चे या उसके माता पिता को जेल नहीं भेजा जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, अब आपसे जानना चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पात्र होते हैं।
2: जिस एक्ट की बात हम आज कर रहे हैं, इस एक्ट में मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और वही लोग इसके पात्र हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा अर्थात एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ सामान्यता कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा से है। इसका उद्देश्य यह है अनुज जी कि बच्चा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी तरह कर सकें। परंतु यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी बच्चे ने समय पर स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है अथवा किसी कारण से उसकी पढ़ाई छूट गई है तो केवल इस कारण से उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देकर आवश्यक विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का भी इसमें प्रावधान है। जो प्रशिक्षण देने की जो बात कही गई है का मतलब यह है कि यदि कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से सीधे कक्षा 4 या 5 में दाखिला दिया जाएगा, ना कि कक्षा 1 में। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि वह बाकी बच्चों की बराबरी कैसे करेगा। तो इसके लिए इस एक्ट में यह प्रावधान है कि स्कूल और शिक्षा विभाग उस

0: बच्चे को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो 3 महीने से लेकर 2 साल तक का हो सकता है, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से उस बच्चे का शैक्षणिक स्तर उसकी कक्षा के साथियों के समक्ष लाया जा सकता है।
1: जी, अगर बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या फीस नहीं दे सकता, तो क्या निजी विद्यालयों में भी शिक्षा का अधिकार मिल सकता है?
0: जी हाँ अनुज जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है धारा 12(1)(c). इसके अंतर्गत निर्धारित श्रेणी के निजी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षा में कम से कम 25% सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए निर्धारित की जाती हैं, और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यह प्रावधान सामाजिक समावेशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों से वंचित ना रहें। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के क्रियान्वयन के लिए राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश रूल्स 2011 बनाए गए हैं, तथा 25% प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
1: जी, क्या विद्यालय को किसी प्रकार की कोई परीक्षा या स्क्रीनिंग भी लेने का अधिकार प्राप्त है एडमिशन हेतु?
0: जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 13 है, ये इस बात को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करती है। देखिए, बच्चे के एडमिशन से संबंधित बच्चे या उसके माता पिता का कोई इंटरव्यू, लिखित या परीक्षा या टेस्ट नहीं लिया जा सकता, और यह एक्ट जो है कैपिटेशन फी लेने तथा बच्चे अथवा उसके माता पिता को किसी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रोसीजर के अधीन करने पर रोक लगाता है। अर्थात मैं कहूँ कि बच्चे के प्रवेश को ऐसी परीक्षा या प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए जिससे अनुचित चयन अथवा भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो। इसी प्रकार प्रवेश के संबंध में कानून में बच्चे के हित में विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है।
1: सूर्य प्रकाश जी, जैसे किसी बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है या कोई और प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या उसके प्रवेश को रोका जा सकता है?
0: बिल्कुल नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कागजी कार्रवाई किसी भी बच्चे के भविष्य के आड़े ना आए। इस धारा 14 के तहत बच्चे की आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र या स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड से किया जाएगा, लेकिन यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो केवल माता पिता की स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर भी बच्चे को तुरंत दाखिला दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को आयु का प्रमाण ना होने के आधार पर स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, और धारा 15 के तहत जो है स्कूलों में दाखिले की एक अंतिम तिथि होती है, लेकिन राइट टू एजुकेशन अधिनियम में यह प्रावधान है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय यदि कोई बच्चा प्रवेश मांगने आता है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा।
1: महोदय, क्या विद्यालय किसी बच्चे को शारीरिक दंड भी दे सकता है?
0: जी नहीं अनुज जी, यह एक महत्वपूर्ण बात है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। बच्चे की गलती होने पर भी शिक्षक या विद्यालय को सुधारात्मक और बाल मित्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बच्चे को मारना, अपमानित करना, सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, डराना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शिक्षा का हिस्सा नहीं है। विद्यालय ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहां बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। हिमाचल प्रदेश में राइट टू एजुकेशन रूल में भी बच्चों के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार और भेदभाव को रोकने का विशेष बल दिया गया है।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, क्या आरटी एक्ट के तहत बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है या बीच में पढ़ाई क्या रोकी भी जा सकती है?
0: जी नहीं, राइट टू एजुकेशन व्यवस्था का मूल दर्शन यह है कि बच्चे की शिक्षा बीच में ना रुके। हालांकि 2019 में धारा 16 में संशोधन किया गया है। अब राज्यों को यह अनुमति है कि वे कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। यदि बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि पुनः परीक्षा में भी बच्चा असफल होता है तो संबंधित राज्य सरकार निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन बच्चे को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति दे सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बनी हुई है, बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इसलिए परीक्षा को बच्चों की शिक्षा से बाहर रखने का माध्यम नहीं, बल्कि उसकी सीखने की कमियों को पहचानने और दूर करने का माध्यम समझना चाहिए।
1: क्या केवल स्कूल और सरकार की यह जिम्मेदारी है या माता पिता का भी कोई भूमिका है इसमें?
0: बिल्कुल, माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है अनुज जी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51A सब क्लॉज K के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य है।

0: कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 10 भी माता पिता या अभिभावक को इस दायित्व को मान्यता देती है कि बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाएं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और समाज, इन सब की संयुक्त जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके।
1: महोदय, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए कानून क्या कहता है?
0: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां कई बार बच्चों के लिए विद्यालय तक पहुंच को कठिन बना सकती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में नेबरहुड स्कूल की अवधारणा है। हिमाचल प्रदेश के नियमों में भी पड़ोस के विद्यालयों से संबंधित दूरी और पहुंच के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जहां आबादी बिखरी हुई है, वहां वैकल्पिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए इस एक्ट के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक सहायता और सुविधाओं का प्रावधान है। और इस एक्ट का मूल सिद्धांत यही है कि बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने में आने वाली भौगोलिक या सामाजिक बाधा उसकी शिक्षा के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती।
1: जी, जैसे आपने दिव्यांग बच्चों की बात कही, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत क्या दिव्यांग बच्चों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त हैं?
0: बिल्कुल, समावेशी शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा सामाजिक और कानूनी दायित्व है। हिमाचल प्रदेश के राइट टू एजुकेशन रूल्स में भी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता सामग्री का प्रावधान किया गया है, तथा विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था का उल्लेख है। और हमें याद रखना चाहिए कि हर बच्चा समान अवसर और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अधिकारी है।
1: स्कूलों की गुणवत्ता और सुविधाओं के संबंध में राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है?
0: देखिए, जो शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल में नाम लिखवा देने तक सीमित नहीं है, बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शिक्षा मिलना भी आवश्यक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में विद्यालयों के लिए शिक्षक, कक्षाएं, शिक्षण सामग्री, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से संबंधित मानक निर्धारित किए गए हैं। शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्धारित योग्यता का पालन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए स्कूल में प्रवेश अधिकार का पहला चरण है, जबकि क्वालिटी एजुकेशन उसका वास्तविक उद्देश्य है।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका मेन मोटिव है। माननीय न्यायाधीश महोदय, कई बार सुनने को मिलता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इनसे क्या समझा जाए?
0: स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इसका उद्देश्य है विद्यालय के कार्यों में समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, विद्यालय के विकास, निगरानी और विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पहलुओं में SMC की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। स्कूल केवल सरकार या शिक्षकों की संस्था नहीं रहता, बल्कि समुदाय की भी जिम्मेदारी बनता है। जब पेरेंट्स विद्यालय से जुड़ते हैं, तो बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा की क्वालिटी और विद्यालय के वातावरण में भी सुधार आता है।
1: जी, ये तो न्यायाधीश महोदय, हमने अधिकारों की बात करी, लेकिन किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से यदि वंचित रखा जाता है, तो माता पिता क्या कर सकते हैं?
0: सबसे पहले पेरेंट्स को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से संपर्क करना चाहिए, और यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो संबंधित शिक्षा विभाग, स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायत भी की जा सकती है। जहां आवश्यक हो, बच्चों को और उसके परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध हो सकती है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यह समझना चाहिए कि केवल पैसे की कमी के कारण उन्हें अपने बच्चे की शिक्षा के अधिकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे मामलों में वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी संपर्क कर सकते हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य यह है कि आर्थिक या अन्य कारणों से कोई भी व्यक्ति न्याय और कानूनी सहायता से जो है वंचित ना रहे।
1: सूर्य प्रकाश जी, अब समय भी हो चला है इस कार्यक्रम में, जितने भी सुनने वाले बच्चे हैं, माता पिता हैं, शिक्षक गण हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: बच्चों के पेरेंट्स से मेरा यह संदेश है कि वे अपने बच्चों को केवल अंकों और परीक्षाओं के चश्मे से ना देखें। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, उनसे बातचीत करें और किसी भी कठिनाई के समय उनके साथ हमेशा खड़े रहें। अध्यापक गण के लिए मेरा संदेश है कि अध्यापक जो है वो राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। स्कूल में आने वाला हर बच्चा अलग पृष्ठभूमि से होता है। कोई गरीब हो सकता है, कोई दिव्यांग हो सकता है, तो कोई पहली पीढ़ी का शिक्षार्थी हो सकता है। इसलिए बच्चों को डराकर नहीं, बल्कि सम्मान और सहानुभूति देकर सिखाएं। हमारे बच्चों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, प्रश्न पूछने में कभी मत डरें। गलतियां करना सीखने

0: की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि स्कूल में कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो तुरंत अपने माता पिता या टीचर्स को इसके बारे में बताएं। और अंतिम बात, बच्चे केवल देश का भविष्य नहीं है, वे आज हमारे समाज के जागरूक नागरिक हैं। एक बच्चे को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति की मदद करना नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करना है। शिक्षा कोई भीख या उपकार नहीं है, यह हर बच्चे का जन्मसिद्ध और संवैधानिक अधिकार है।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया। जब बच्चे एक राष्ट्र की नींव होती हैं, वो शिक्षा के अधिकार को पाएं और राष्ट्र की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आकाशवाणी हमीरपुर को आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। इसमें आज बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विषय पर श्री सूर्यप्रकाश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर से भेंट कर रहे थे अनुज कुमार। ये कार्यक्रम FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी रिले किया गया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।
3: Sporty look, standard 6 airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. Ye hai epic new Maruti Suzuki Swift Petrol. Ab paye powerful Z series engine ke saath, jo har drive ko banaye mazedar aur economical. Aur ab milega total benefit up to ₹35,000. Style, safety aur savings sab ek hi package mein. To der kis baat ki? Apne nazdeeki Maruti Suzuki Arena showroom par aaj hi visit kijiye aur Swift Petrol ghar laaye. Jaldi kijiye kyunki kimaton mein ₹20,000 tak ki badhotri jald hone wali hai. TNC apply.
4: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
5: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
4: जी डॉक्टर साहब,
5: सिर्फ इसे नहीं सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
6: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश राज्य जनहित में जारी।
7: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
8: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
7: और पाइए ₹1,05,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
8: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
7: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन भारत जैसे देश में पानी की कहानी सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है, ये खेती की कहानी है, गांव की अर्थव्यवस्था की कहानी है, महिलाओं के श्रम की कहानी है, स्वास्थ्य की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कहानी भी है। पिछले 25 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो जल प्रबंधन का विषय उनकी प्रशासनिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं में रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत चर्चा करेंगे 25 वर्ष पानी संकट से सुरक्षा तक। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में राष्ट्रीय जल मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते
3: जी, धन्यवाद।
1: अशोक जी, सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो जल क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव रहा है, मोदी जी की जो गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जल सुरक्षा के अंतर्गत किए गए उपायों को आप किस तरह से आंकते हैं?
2: धन्यवाद। पहले मोदी जी को बधाई 25 ईयर्स कम्प्लीशन करने के लिए। मोदी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब में इकोनॉमी में क्या है, बट जो वाटर सेक्टर में जितना योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम के तौर पे किया था। बेसिकली उनके जो फिलॉसफी थे वाटर के बारे में, ये वाटर एक बुनियादी रिसोर्स है जिसको हम मानते थे पहले कुदरत की देन, तो हमेशा आते रहते हैं, बट उसको भी संभालना है, उसको डेवलप करना है। ये उन्होंने 2001 में जब सीएम गुजरात बने थे तब से वो शुरू कर लिया था। कच्छ में वो पानी लेके उसको अच्छा वो खासा बनाया, ग्रीनरी बनाया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लाइन, उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था। प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था। जल का मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे, उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
1: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से, उन्हीं जो मिशन थे उसको

0: राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
1: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है। वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं, जमाने से चला आ रहा है, ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की वजह से, वो भी है। और चौथा जो है वो हर जगह आप देखने को मिलता है पूरे भारत में, जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है, नमक जहां से पैदा होता है, जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, चूंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पानी की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है इस तरह का। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा।
0: जी,
1: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई। बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी हाँ, खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुँचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम।
1: और आप देखिए ना, पानी नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की संबद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
0: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
2: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुँच गयी थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाना था। योजना में सिंचाई, जल

0: चयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में न जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुंचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था। पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था। और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी तस्वीर आप क्या मानते हैं किस तरह से बदल दी?
2: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज़ प्रभावित करती है, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहाँ पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके पापा वहाँ पानी ले लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बजाय सौनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशनबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इंप्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के। तो टू और थ्री इंपॉर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है, जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते, नर्मदा डैम उन्होंने कंप्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं then everybody gets involved। ये कैच द रेन एग्जाम्पल है यहाँ पे।
1: जी जी।
2: So, जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितने भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते उसको संचय करके रखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें थीम ये था कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बकरा नंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जाना चाहूँ, हम सौनी योजना की बात कर रहे थे, तो सौनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
3: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। सौनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था

0: बजटिंग का अब जमाना आ गया है कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
2: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
2: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन अ वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो वेरी सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ, तो अगर अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है और ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
0: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए सुजलाम सुफलाम जो योजना है ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है। उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है। उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल पारंपरिक, आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं हैं, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके आपने कहा पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
0: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है। वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां का बात की बात करते हैं तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया। तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?

0: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे। ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन व ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने, उस समय SCM। तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है।
1: जी
0: एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं है कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठो, तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन लेने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी की बचत का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने वन पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगनेंट वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते हैं, वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे।
1: जी
0: क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ
1: बिल्कुल
0: प्रयोग कर सकते थे। तो
1: जी
0: ये एक नया सोच था, और सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके
1: करके
0: रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
2: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं।
1: जी
2: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है, वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है, उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे,
1: जी
2: बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहां बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में, और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत के उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए, पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना, इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
0: रीयूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बट आई वुड से दैट मोर देन रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, हमको व्हाट वी शुड लुक एट इज रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर. स्वेज वाटर को भी ट्रीट करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% वाटर यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, वेस्ट में होता है. तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर तो ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है वो कम होता है. भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का, उससे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी.
0: उसी तरफ से हमको इन्वॉल्व करना है. और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट डुअर पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेज आते हैं उसमें डुअर पाइप लगाए और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज कर सकते हैं, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते हैं. तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं. अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया. और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है. तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
0: ये एक आई वुड से अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है. जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेड फोर्ट से, दैट वाज ही वाज एडिंग अस अ वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे. और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू द फैमिलीज बी रिलीजियस. देखा जाए तो हर गाँव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है. और महिलाओं को और एक इस वाटर में इंपॉर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है. बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है. इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन हाउस फॉर द वुमन गिव सेविंग दम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन अ ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया. सेकेंड अच्छा पानी पीने का पानी पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसके वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट. ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हुआ दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल इन यूएन में दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हमें कर पाया इतना बड़ा काम कैसे कर सके बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है. और जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है. आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का प्लम्बर्स का लोकल करना ये सब जल जीवन मिशन का हिस्सा है एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस.
1: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहां फोकस पानी पहुंचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव हैं और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है जुड़ गए हैं और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है. और जहां तक बात आगे के लिए है तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल उसकी संस्कृति जो विकसित हुई वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को जो जल के जो संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। लेकिन

0: शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अब यह केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो।
1: जी,
0: चुनौती यही है,
1: यही चुनौती है और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना है, इससे निपटना है। और
0: जितना
1: जी,
0: पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
1: जाना ही
0: उसमें
1: चाहिए।
0: जहाँ
1: और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है। अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
2: दिस इज़ अ वंडरफुल डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते हैं उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहाँ से फिर पम्प करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें, बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहाँ बरसते हैं वहीं वहीं को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहाँ पे करना है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं। सेकंड पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति बूढ़ा बच्चा महिला मर्द सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं, और अपने घर में अपने आंगन में जो भी बारिश आते है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल्स उसका बढ़ जाते हैं और हमारा एनर्जी भी सेविंग हो जाता है, क्योंकि पहले हम देते थे कि ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे, 2 HP मोटर, 5 HP मोटर, 10 HP मोटर तक किया। अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाता है और एनर्जी का भी सेविंग होता है। तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन।
1: जी अमरिंदर जी, कैच द रेन जो मूवमेंट था, मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रयासों में किस तरह से बदलाव आया है?
0: देखिए, ये अवधारणा तो नई तो है नहीं, लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो ये है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच भी, ठीक है। दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है, जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है, आत्म प्रतिबद्धता, वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना, पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए, कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए, जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है। और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की, कि पानी की संभावना, पानी की मौजूदगी, कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो हैं वो विकसित की जाए, उनको एडॉप्ट किया जाए। जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी जो मोटे अनाज है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है।
1: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: इंडिया में 85-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे यहाँ वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था। एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन PMKSY हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रचार किया, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी कर लिया, और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वी विल बी सेविंग अ लॉट लॉट लॉट वाटर।
1: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर सिद्ध हो रही है, और इस तरह से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी है सिर्फ एक नल तक पहुँचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में

0: नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरेंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये देश का गान।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 9:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सचिवालय में नए कार्यालय से चलाएंगे सरकार, सीएम कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। शिमला के भट्टाकुफर चलौठी सुरंग निर्माण में ब्लास्टिंग से आसपास के कई मकानों में दरारें, लोगों में भय का माहौल। संजौली में मकानों में दरारों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का स्पष्टीकरण, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान बरती गई सभी जरूरी सावधानियां, नवंबर 2025 से सुरंग में ब्लास्टिंग बंद। सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी जू में अब सुनेगी बंगाल टाइगर की दहाड़, नागपुर से जू पहुंचा बंगाल टाइगर का जोड़ा। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ, 24 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला स्थित सचिवालय में नए कार्यालय से सरकार चलाएंगे। करीब दो साल से निर्माणाधीन सीएम कार्यालय का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। इस भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। नए भवन की एक मंजिल मुख्य सचिव और उनके स्टाफ के लिए रखी गई है, जबकि दूसरी मंजिल पर सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का कार्यालय होगा। हालांकि कुछ अन्य कमरों का कार्य अंतिम चरण में है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भाजपा के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान सरकार 3.5 वर्ष में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद भी प्रदेश में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है। शिमला के भट्टाकुफर से संजौली के चलौठी और शांति विहार क्षेत्र में फोर लेन सुरंग निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग के कारण कई मकानों और ढली संजौली बाईपास सड़क में दरारें आने का मामला सामने आया है। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार शांति विहार वार्ड के समिट्री से सटे रिहायशी इलाके में 7 से ज्यादा भवनों को खतरा पैदा हो गया है और इन भवनों के फर्श और दीवारों पर दरारें आ गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि रात के समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे सुरंग के ऊपर बने रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने इलाके का निरीक्षण कर टनल निर्माण बंद करने का मामला भी उठाया है। इस बीच इस मामले पर एनएचएआई ने कहा है कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान सभी जरूरी सावधानियां बरती गई है। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित स्थानों पर मुरम्मत का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुके हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नवंबर 2025 से ब्लास्टिंग का कार्य रोक दिया गया है और इसके बाद कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, खेल और आधारभूत ढांचे के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वे कल पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी जू में अब बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। करीब एक दशक के इंतजार के बाद कल नागपुर से रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा श्री रेणुका जी जू में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे नाहन संवाददाता।
1: रेणुका जी मिनी जू में लंबे समय से चल रहा टाइगर का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। टाइगर का पहला जोड़ा रविवार देर शाम सुरक्षित श्री रेणुका जी पहुंचाया गया है। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर्स को कड़ी सुरक्षा के बीच रेणुका जी लाया गया। इन दोनों टाइगर्स ने नागपुर से श्री रेणुका जी तक करीब 1800 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। करीब 43 घंटे चली इस लंबी यात्रा के दौरान वन्य प्राणी विभाग की विशेष टीम लगातार उनके साथ रही। टाइगर्स के लिए श्री रेणुका जी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1,67,00,000 रुपए की लागत से बाड़ा तैयार किया गया है। साथ ही एक आधुनिक वन्य प्राणी अस्पताल भी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
2: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला जिला प्रशासन ने हर पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के तहत पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करेगी और उसी के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
5: पहले चरण में जिला के 4 विकास खंडों मशोबरा, जुब्बल, नारकंडा और बसंतपुर के खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। आगामी चरण में अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। उपायुक्त शिमला ने कहा है कि जिला के समग्र विकास के लिए सुदृढ़ कार्यतंत्र तैयार किया गया है। सांसद निधि, विधायक निधि सहित विभिन्न योजनाओं एवं प्रतिस्पर्धात्मक योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय बजट के माध्यम से स्कूल भवनों, अस्पताल भवनों तथा अन्य आधारभूत एवं जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू के तत्वाधान में बाल रक्षा भारत द्वारा आपदा मित्र स्वयंसेवकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा मित्र स्वयंसेवकों को जीवन रक्षक कौशल, प्राथमिक उपचार व CPR, अग्नि सुरक्षा, खोज व बचाव, प्रारंभिक चेतावनी सहित मॉकड्रिल जैसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशलों से सशक्त बनाना था। इस मौके पर उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि आपदा के समय सही तैयारी, समय पर निर्णय और जीवन रक्षक कौशल कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 सितंबर तक प्रदेश में मौसम के आमतौर पर साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि 25 व 26 सितंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहा। मैदानी इलाकों में लोगों को तापमान में इजाफा होने से दिन के समय गर्मी का एहसास भी करना पड़ रहा है। हालांकि बीते दिनों ऊंची चोटियों पर हिमपात व बारिश से तापमान में गिरावट से यहां के लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस मॉनसून सीजन में बारिश सामान्य से कम रही है, लेकिन बारिश से जुड़ी घटनाओं में जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 329 लोगों की मौत हुई है और 567 लोग घायल हुए हैं। उपमंडल स्तरीय योजना विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आज कांगड़ा जिला के इंदौरा में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक मलेंद्र राजन करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों व उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की भी समीक्षा की जाएगी। कुल्लू जिला के GB के समीप देर शाम एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवती घायल हुई है। युवती का उपचार कुल्लू अस्पताल में चल रहा है। व्यक्ति की पहचान केरल राज्य के निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, पार्वती परियोजना की टनल से रिसाव, 3 मकान दबे, सड़क बंद से फंसा। पंजाब केसरी ने लिखा है, कुल्लू में पार्वती परियोजना की टनल्स में रिसाव, पालचरा गांव में आधी रात को मची तबाही, लोगों ने भागकर बचाई जान। दैनिक जागरण ने लिखा है, किन्नौर में सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट, कांगड़ा निवासी की मौत। 9 इको टूरिज्म साइटें आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार, दैनिक भास्कर की एक खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज

0: के शिमला स्थित सचिवालय में नए कार्यालय से चलाएंगे सरकार, सीएम कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। शिमला के भट्टा खुफर चलौटी सुरंग निर्माण में ब्लास्टिंग से आसपास के कई मकानों में दरारें, लोगों में भय का माहौल। संजौली में मकानों में दरारों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का स्पष्टीकरण। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान बरती गई सभी जरूरी सावधानियां। नवंबर 2025 से सुरंग में ब्लास्टिंग बंद। सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी जू में अब सुनेगी बंगाल टाइगर की दहाड़। नागपुर से जू पहुंचा बंगाल टाइगर का जोड़ा। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ, 24 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों का कारवां। गीतों का कारवां कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के इस सफर में हूं मैं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त एकता। श्रोताओं, गीत सिर्फ सुने ही नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ धुनें सिर्फ कानों तक नहीं गूंजती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। तो आइए आज फिर सजाते हैं सुरों की महफिल और शुरू करते हैं यादों, एहसासों और खूबसूरत से नगमों का सफर, गीतों का कारवां।

0: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये गीत। इस गीत को गाया था एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और गीतकार समीर।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला एसईएल टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी ये गीत सुना आपने फिल्म सड़क से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे थे समीर सुरेंद्र साथी और रानी मलिक ने। गीत के लिए धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में फिल्म हीरो का ये गीत, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने, और शब्द रचना फिर से है समीर की।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गीतों का कारवां, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म नाम का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फूल और कांटे से ये गीत, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

गीतों का कारवां आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में पहला लोकगीत शामिल कर रहे हैं अंकुश संदल की।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर का गाया ये लोकगीत।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: पहाड़ों के सुर, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगला लोकगीत, पेश है आपके रेडियो सेट पर सुरेश वर्मा की आवाज में।

अभी ये लोकगीत सुना आपने सोनिया शर्मा और कल्पना शर्मा की आवाज़ों में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं विशाल पठानिया का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11 बजने को कुछ ही पल बाकी हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला स्थित सचिवालय में नए कार्यालय से सरकार चलाएंगे। करीब दो साल से निर्माणाधीन सीएम कार्यालय का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। इस भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। नए भवन की एक मंजिल मुख्य सचिव और उनके स्टाफ के लिए रखी गई है, जबकि दूसरी मंजिल पर सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का कार्यालय होगा। शिमला के भट्टा कुफर से संजौली के चलौंठी और शांति विहार क्षेत्र में फोर लेन सुरंग निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग के कारण कई मकानों और ढली संजौली बाईपास सड़क में दरारें आने का मामला सामने आया है। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार शांति विहार वार्ड के समिट्री से सटे रिहायशी इलाके में 7 से ज्यादा भवनों को खतरा पैदा हो गया है और इन भवनों के फर्श और दीवारों पर दरारें आ गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि रात के समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे सुरंग के ऊपर बने रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया है।

0: ब्लास्टिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी जू में अब बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। करीब एक दशक के इंतजार के बाद कल नागपुर से रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा श्री रेणुकाजी जू में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: रेणुकाजी मिनी जू में लंबे समय से चल रहा टाइगर का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। टाइगर का पहला जोड़ा रविवार देर शाम सुरक्षित श्री रेणुका जी पहुंचाया गया है। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर्स को कड़ी सुरक्षा के बीच रेणुका जी लाया गया। इन दोनों टाइगर्स ने नागपुर से श्री रेणुका जी तक करीब 1800 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। करीब 43 घंटे चली इस लंबी यात्रा के दौरान वन्य प्राणी विभाग की विशेष टीम लगातार उनके साथ रही। टाइगर्स के लिए श्री रेणुका जी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1,67,00,000 रुपए की लागत से बाड़ा तैयार किया गया है। साथ ही एक आधुनिक वन्य प्राणी अस्पताल भी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू के तत्वाधान में बाल रक्षा भारत द्वारा आपदा मित्र स्वयंसेवकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा मित्र स्वयंसेवकों को जीवन रक्षक कौशल, प्राथमिक उपचार व CPR, अग्नि सुरक्षा, खोज व बचाव, प्रारंभिक चेतावनी सहित मॉक ड्रिल जैसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशलों से सशक्त बनाना था। इस मौके पर उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि आपदा के समय सही तैयारी, समय पर निर्णय और जीवन रक्षक कौशल कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल्लू जिला के जीबी के समीप देर शाम एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवती घायल हुई है। युवती का उपचार कुल्लू अस्पताल में चल रहा है। व्यक्ति की पहचान केरल राज्य के निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 सितंबर तक प्रदेश में मौसम के आमतौर पर साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि 25 व 26 सितंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि इस मॉनसून सीजन में बारिश सामान्य से कम रही है, लेकिन बारिश से जुड़ी घटनाओं में जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 329 लोगों की मौत हुई है और 567 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार,
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम महक पंजाब दी। श्रोतों, पंजाब एक ऐसा नाम है जिसमें खेतों की हरियाली है, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू है, लोकगीतों की मिठास है और दिलों में बसा अपनापन है। आज इसी पंजाब की खुशबू को सुरों में पिरोकर हम लेकर आए हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी। तो कार्यक्रम का पहला पंजाबी गीत एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

सुरजीत विंद्रखिया की आवाज़ में अभी सुना ये पंजाबी गीत। कार्यक्रम में अगला पंजाबी गीत शामिल कर रहे हैं निर्मित खेरा की आवाज़ में।

अभी ये पंजाबी गीत सुना आपने सतिंदर सत्ताज का गाया हुआ। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं हंस राज हंस की आवाज़ में अगला पंजाबी गीत।

महक पंजाब दी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपके रेडियो सेट पर है असा सिंह मस्ताना का गाया ये पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे महक पंजाबी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: दंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
3: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
3: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
3: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
3: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
3: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, दिस इज माई टाउन।
2: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी।

0: अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
1: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
0: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
1: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
0: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा,
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ, माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा, मैंने कहा
2: ना। अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ, कोई सुनता भी तो नहीं है। मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ, क्या सोच रहे हो?
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गाँव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो। माँ दे दो ना, माँ दे दो।
3: अरे बेटा सुनो तो।
2: माँ एक लालटेन दे दो।
3: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
2: अरे माँ लालटेन दे दो।
3: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो। देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है?

0: कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
1: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
2: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
1: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।
0: मामा, माँ।
3: अरे अरे, बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
3: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
3: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
3: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
3: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
1: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
2: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
1: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
2: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
1: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
2: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
1: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
2: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा, यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके,

0: और जाने कितना झूल चुके हो। अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला। उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
1: हाय, ये क्या शरारत! तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की? ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
0: रक्कास,
2: नाचने वाला।
0: ताब,
2: ताकत, बर्दाश्त।
0: हिंसा,
2: नंबर, अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे?
2: सवाल नंबर 2,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी?
2: सवाल नंबर 3,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
2: सवाल नंबर 4,
0: चट्टू, टिल्लू, खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
3: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM 103.4 MHz पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए। कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत के साथ।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। गायक कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अमित कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म लव स्टोरी का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी में सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हो सकी है आपकी अपनी रेडियो सखी एकता। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, लेकर हाजिर हो गए हैं हम तो आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें है रिश्तों की गर्माहट, जीवन से जुड़ी बातें, संस्कृति की खुशबू और आपके मन की आवाज़। तो फटाफट से जुड़िए आप अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ। सखियों, इस कार्यक्रम में जब हम आपके साथ जुड़ती हैं तो हमारा ये प्यारा सा रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। सखियों, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब सैर की संक्रांति के बाद जो है हल्की हल्की ठंड जो है दस्तक देना शुरू कर देती है, और अब हमारे यहाँ भी मौसम में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव महसूस किया जा रहा है। सुबह शाम ठंडी ठंडी सी हवा ने सर्दी का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमें ये समझ लेना है कि मौसम

बदल रहा है और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा और सतर्क रहना है। जी हाँ, जब भी मौसम बदलता है तो अक्सर हम लोग सर्दी, खांसी, बुखार से जकड़ जाते हैं। तो बदलते मौसम में हमें अपना तो ध्यान रखना ही है, साथ ही अपने अपनों, अपने बच्चों, बड़ों का जो है ध्यान रखना है, तभी हम स्वस्थ रहकर इस मौसम का भी सब आनंद ले पाएंगे। सखियों, आज है सोमवार और सोमवार को सुनो सखी के इस अंक में हम बात करते हैं अपनी हिमाचली संस्कृति की, हमारी मिट्टी की, हमारी संस्कृति की, हमारे रीति रिवाजों की और हमारी परंपराओं की हम हर सोमवार आपसे बात करते हैं। तो सखियों, जब बात हो रही है संस्कृति की तो भाई मेलों को कैसे भुलाया जा सकता है। मेले सिर्फ भीड़ का नाम नहीं, मेले तो आपसी मेल मिलाप का पैगाम है। सखियों, मेले सिर्फ बाजार नहीं, हमारी संस्कृति और परंपराओं की पहचान है। हमारे हिमाचल को आप तो जानती ही हैं कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहाँ के मेले भी हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए हुए हैं। आप तो जानती हैं कि जब हम छोटे थे तो सब सखियाँ मिलकर कई दिन पहले ही मेले में जाने की योजना बना लेती थी। हम सखियाँ ये भी सोच लेती थी कि वहाँ जाकर हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या खाना है और कौन कौन से झूलों में बैठना है। तो सखियाँ, क्या आपने कभी गौर किया है कि मेले में बजते ढोल नगाड़े, कुश्ती, लोकगीत हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। आप इन मेलों में जाइए, आनंद उठाइए और अपनी संस्कृति से जुड़ी रहिए और अपनी मिट्टी की खुशबू को हमेशा अपने दिल में बसाए रखिए। और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हमारे संस्कृति के परिचायक मेलों की। बात करें हिमाचल के सुजानपुर में लगने वाले होली मेले की, तो सखियों मेलों की रंगीन दुनिया में सुजानपुर का होली मेला भी अपनी अलग पहचान रखता है। होली के रंग, लोक संस्कृति और लोगों का उत्साह इस मेले को और भी आनंदमय बना देता है। बरसात के मौसम में चंबा में लगने वाला मिंजर मेला भी चंबा की समृद्ध संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। ये मेला भी विश्व प्रसिद्ध है। सखियों, मंडी में शिवरात्रि पर लगने वाला मेला देव संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप तो जानती ही हैं कि मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के देवी देवता मंडी में इकट्ठे होते हैं। देव आस्था, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक समारोह इस मेले को और भी विशेष बनाते हैं। सखियों, कुल्लू में दशहरे के उपलक्ष्य पर लगने वाला मेला एक मेला नहीं, हिमाचल की देव संस्कृति का भव्य स्वरूप है। विभिन्न क्षेत्रों में जो देवी देवता होते हैं उनकी पालकियाँ कुल्लू की ओर आती हैं, पूरा वातावरण श्रद्धा और उल्लास से भर जाता है। तो अगर आपने अभी तक कुल्लू का जो दशहरा मेला नहीं देखा है, तो इस बार दशहरे पर ज़रूर कुल्लू मेला जो है देखने जाइए और आनंद उठाइए। सखियों, हमारे हर गांव कस्बे में स्थानीय मेले लगते हैं। इन मेलों में स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्तुएं, स्थानीय खान पान के स्टॉल और दुकानें सजती हैं। अब तो दूर दूर से लोग इन मेलों में आने लगे हैं और अपनी दुकानें भी सजाने लगे हैं। मेलों में चाट पापड़ी खाने का हम सब ही आनंद उठाते हैं, साथ ही अपने घर परिवार के लिए सामान भी लेते हैं। हमारी बहुत सी सखियों ने अपने स्टॉल भी इन मेलों में लगाए होते हैं। जी हाँ, अब हम सखियाँ केवल दर्शक नहीं बल्कि हम भी अपने हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों का प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सखियों, ये मेले हमारे हुनर को पहचान देने और स्थानीय स्तर पर हमें आत्मनिर्भर बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। हमें अपने हस्तशिल्प, घरेलू उत्पादों को बनाने का तरीका अपने बच्चों को भी सिखाना है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बनी रहे। जिस संस्कृति से हमारी पहचान है, जिस परंपरा से हमारी जड़ें जुड़ी हैं, तो उन्हें हमें उस संस्कृति को अपने बच्चों को भी मिलाना है, उस संस्कृति से हमें बच्चों को जोड़ना है। सखियों, ये मेले हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिकता के साथ बढ़ना तो जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति परंपराओं को संभाल कर सहेज कर रखना भी हमारा कर्तव्य है। अपनी संस्कृति से खुद भी जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़े। सखियों, कार्यक्रम में आगे बात करते हैं आज के दिवस की। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। शांति केवल युद्ध का ना होना नहीं, बल्कि हमें एक दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम, सम्मान और सद्भाव भी बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 में इस दिवस की स्थापना की और सन 1982 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। सखियों, ये दिन हमें शांति, अहिंसा, भाईचारे और आपसी सहयोग के महत्व की याद दिलाता है। आज पूरी दुनिया अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में ये दिन हमें संदेश देता है कि हमें अपनी मुश्किलों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि समझदारी, आपसी सहयोग और प्यार से बातचीत करके करना है। सखियों, किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ सम्मान होगा वहीं सद्भाव होगा, जहाँ सद्भाव होगा वहीं शांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहीं मानवता मुस्कुराएगी। तो आज का दिन हम सभी को ये प्रेरणा देता है कि हम सभी शांति का माध्यम बने और अपने आसपास प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दे। सखियों, प्रेम ही हमें एक दूसरे से जोड़कर रखता है, तो सबके साथ प्यार से रहें, एक दूसरे का सहारा बने और अपने घर, देश, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं एक और प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, यादों को संभालना, अपनों को समझना और उनका साथ निभाना, यही सच्ची संवेदनशीलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है, हमारी जो याददाश्त है वो कम हो रही है। सखियों, भूलना हमेशा सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं होता। जी हाँ, आप हमारी बातों को सुनकर सोच रही होंगी कि हम कहाँ से कहाँ अपनी बातों को लेकर पहुँच गए हैं, पर सखियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम कार्यक्रम में अभी बात करेंगे विश्व अल्जाइमर दिवस की। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने और दैनिक काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। ये समस्या अधिकतर बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलती है, लेकिन आयु बढ़ने का ये सामान्य हिस्सा नहीं है। कई बार हम लोग अपने घर में ही देखते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ सामान रख कर भूल जाते हैं। क्या कई बार हमारे बड़े एक ही बात को बार बार हमसे पूछते हैं और हम उन्हें उस वक्त समझते नहीं और कई बार गुस्से में उन्हें उत्तर देते हैं। सखियों, ये अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं। वक्त पर डॉक्टरी जांच और उपचार से हम इन अपनों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। अल्जाइमर से प्रभावित व्यक्ति को सबसे अधिक ज़रूरत है अपनेपन, समझ, प्रेम और सम्मान की। इसलिए ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं, उन्हें शर्मिंदा ना करें, ना ही उन्हें गुस्सा करें, बल्कि उनके साथ शांति से पेश आएं और धीरे से उन्हें सब बातें याद करवाएं। सखियों, उन्हें डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएं और अपना वक्त, सहयोग और प्यार उन्हें दें, क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो सकती है लेकिन प्यार और अपनापन कभी कम नहीं होना चाहिए। यादें धुंधली पड़ सकती हैं लेकिन रिश्तों में मिठास कम नहीं होनी चाहिए। हमें अपने रिश्तों का साथ निभाना है, उन्हें सम्मान और प्यार देना है। सखियों, कार्यक्रम में बातें तो बहुत सी होगी, अब चलते हैं अपनी रसोई की तरफ और आज हम कार्यक्रम में आपके साथ मिलकर बनाएंगे ओट्स कटलेट्स। सखियों, शाम की चाय के साथ हर सखी के घर में स्नैक्स बनाने का जो है काम होता है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश रहती है कि शाम को माँ कुछ चाय के साथ चाहिए। तो आज हमने सोचा क्यों ना एक हल्के स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो सखियों, आज हम बनाएंगे ओट्स कटलेट्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं और ये कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है एक कप ओट्स, एक से दो उबले हुए आलू, एक मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ, एक चौथाई कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, एक चौथाई कप उबले हुए मटर, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो मटर की जगह शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं। अगर शिमला मिर्च डालनी है तो इसे भी आप बारीक प्याज की तरह काट लें। एक बारीक कटी हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार और एक से दो चम्मच तेल। सखियों, सबसे पहले हमें जो ओट्स हैं उनको एक पैन में हल्का जो है भून लेना है और गैस बंद कर देनी है। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें दरदरा पीस लें। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ये दरदरे पीसे ओट्स, दो उबले हुए आलू मैश कर लें। अब इनमें जाएगा एक बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ पनीर, उबले हुए मटर, बारीक कटा हरा धनिया, गरम मसाला, अमचूर, नमक, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकती हैं। अब सारे मिश्रण को सखियों हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इस मिश्रण की छोटी छोटी सी लोइयां बनानी है, पर जब भी आप लोइयां बनाएं तो अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि ये अच्छे से बने। अब आप इस मिश्रण से उसे टिक्की या कटलेट का आकार जो है दे सकती हैं। सखियों, आप इन कटलेट्स को एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं या फिर अप्पे पैन में भी बना सकती हैं। जी हाँ, अगर आप कम तेल खाना पसंद करती हैं या अपने बच्चों को ज़्यादा तला भुना नहीं देना पसंद करती हैं तो आप इनमें ये बना सकती हैं, और अगर आप ज़्यादा चटपटा तला भुना खाना पसंद करती हैं तो आप एक लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर इन्हें जो है मध्यम आंच पर सुनहरा भुना होने तक तलें। और अगर आप अप्पे पैन में बना रही हैं या एयर फ्रायर में बना रही हैं तब आप इन्हें जो है जब डालें तो उस जो पैन है उसमें हल्का सा तेल लगाएं और इनको अपने हाथ से कटलेट का आकार देकर उस पैन में रखें और बीच बीच में पलटते रहें।
सखियों जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें जो है एक प्लेट में निकाल लें। अब आप इसे हरे धनिए और पुदीने की चटनी या फिर सॉस के साथ जो है परोस सकती हैं। तो बनाइए आज आप भी शाम की चाय के साथ ये स्वादिष्ट हेल्दी कटलेट्स और मिल बांट कर खाइए अपने अपनों के साथ। और हम सुनते हैं मिलकर ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ अब अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कुछ बातें दिल में उतर गई, कुछ मुस्कान बनकर साथ चलेंगी। इसी प्यार और अपने पन के साथ लेते हैं कार्यक्रम में आपसे फिर से अनुमति। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने। इसी के साथ प्यारी बहनों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं। अब 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा

की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: आंसुओं से भरी हो तो कोई कैसे लिखे, क्या लिखे, किसी ने आंखों में आंसू दिए, हम चाहते तो बदले में उसकी आंखें भी नम कर सकते थे, मगर दिल ने कहा छोड़ दो। हर दर्द का जवाब दर्द से देना जरूरी नहीं होता। हमने उसे माफ किया, कोई सजा नहीं दी, बस दिल से एक दुआ निकली, तुम जहां भी रहो खुश रहो और कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाना जितना मेरा दुखा है। दिल में दर्द हो फिर भी किसी के लिए नफरत ना हो। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये गीत सुनिए, शायद इस गीत से आपको कुछ आराम हो। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

यहूदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि अनसुना सा गीत है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि आज सोच रहा था कमेंट है ना करूं, फिर दिल ने नहीं माना क्योंकि आप हम जैसों के कमेंट की ओर ध्यान ही नहीं देते। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कमेंट सामने आते हैं हम उन्हें ज़रूर पढ़ते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, गुस्से वाला ही कमेंट सही, नाराज़गी वाला कमेंट ही सही शामिल तो हुआ। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नजरें मिली तो लगा जिंदगी मिल गई, धड़कनों को जैसे एक नई साज मिल गई, पर वो मुस्कुराहट महज एक छलावा थी, वादों की कश्ती बीच भंवर में खो गई, एक आस जगी थी सूने दिल में जो पल भर में आंसुओं के धार में बह गई, खोए हुए उस साए को तलाशती ये राहें जहां कभी चाहतों के हंसी सिलसिले हुए, निगाहों के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, कभी पास लाते हैं तो कभी दूर कर जाते हैं, वो जो पलकों को उठाकर मुस्कुराना तेरा, अब वही यादें सीने में तीर सी चुभती हैं, कभी इन आंखों में वफा का नूर था, आज वही नैना तन्हाई के साए में अंगारे हुए। भाई क्या बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि शब्दों से बनने वाले गीत यदि लिखे जाएं तो पहले तो शब्द ही इतने हैं कि उन्हें गिनने और गिनकर लिखने में कम से कम आधे घंटे में पूरे हो जाएं तो गनीमत है, फिर उन पर गीतों के चयन प्रक्रिया में तो यदि 4 से 6 घंटे लग जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई पूरे के पूरे फिल्मों के गीतों को खंगालते हुए चयन करना कोई तो 1-2 घंटे का काम है ही नहीं, फिर कार्यक्रम तो केवल 1 घंटे का है। फिर भी भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद के गीत लिख सकते हैं और यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आपकी पसंद के गीत और हमारे गीत कितने मिलते हैं यही तो पता चलेगा। और शब्द हो सकता है कि आप कोई नए शब्द चुन लें उस इबारत में से जो हमें भी नज़र आए हों, और ये बातें ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। तो अपनी जो प्रक्रिया है आप जारी रखें, हमारी प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे क्या देखें। और हमारे एक और साथी

कहती हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का, प्यार या प्रेम का या जीवन का कोई भी गहरा भाव, वो अक्सर शब्दों का मोहताज नहीं होता और आंखों से ही बयां हो जाता है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जब जुबान खामोश होती है तब भी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। शब्दों में झूठ छुपाया जा सकता है, लेकिन आंखों की चमक या उसकी नमी कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेम का असली स्वाद और सुकून किसी की सिर्फ एक नज़र से महसूस किया जा सकता है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूरी बात समझ लेना सबसे खूबसूरत रिश्ता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हमको हमारी गणित की अध्यापिका का खतरनाक तरीके से आंखें निकाल कर देखने का अनुभव आज तक याद है। उनकी आंखों का एक इशारा सारी क्लास को पल भर में ही खामोश करवा देता था। भाई ऐसे ही आपको याद आ रही है, किन की आंखों का इशारा याद आ रहा है? क्या कोई बेहतरीन अच्छा अच्छा किस्सा भी हो सकता है? कुछ खूबसूरत किस्सा हो सकता है, कुछ ये डराने वाला किस्सा हो सकता है। अक्सर तो जब घर में मेहमान आते हैं तो भी आंखों का इशारा बहुत किया जाता है। कुछ ऐसा अगर आपको याद आए तो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल याद करके बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का वो गीत है और लिखा किसने है।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
1: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया और हमारे साथी अलग अलग बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे साथी मोहम्मद रफी की आवाज़ पहचानना तो बिल्कुल पहचान ही सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुबान से तो झूठ पकड़ा नहीं जाता मगर आंखें सब बयां कर देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जो बात जुबान नहीं बोल पाती आंखों से पता चलता है। कई बच्चे तो आंखों में ही डरते हैं, इन्हीं आंखों में हम कई सपने सजाते हैं लेकिन आंख खुली और सपना जैसे आंखों से ओझल हो जाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं होता, शायद किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। तो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम ज़रूर उसे शामिल कर लेते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सज़ा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहाँ नफरत से कहीं ज़्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वाह क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नज़रें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं, ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो अजीब सी उधेड़ बुन में होता हूँ कि नज़रों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाय करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मज़े के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाहिया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं, जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
2: झुके जो तेरे ने

काके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें नजर ध्यान। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वही हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफ़र वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया, एक नन्हा सा सपना जो सजाया था पलकों पर, न जाने वो पलक झपकते ही कहाँ गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि नज़र भी अजीब शह है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नज़र हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नज़र में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नज़र ज़रूर आता है, उधार लेने वाला नज़रें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नज़र से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नज़र मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नज़रों के इशारे और दिल में उठती प्यार की नज़रें, प्यार की लहरें मन को एक अनोखी खुशी देती है, कभी नज़रें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म और अपनापन, और कभी आंसुओं में छिपा दर्द सामने आ जाता है, यही नज़रों और नैनों के अनकही किस्से प्रेम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वैसे नज़रों के या कहें आँखों के रंगों के ऊपर भी कहा जाता है अलग अलग भावों के लिए, कि जब कोई गुस्सा होता है तो आँखें लाल कर देता है और इस तरह की बातें भी होती हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ किस्से या बातें जानते हैं या कुछ कहावतें भी आप हमें बता सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहने कि मैं तो सोचती हूँ घर की शांति बनाए रखने के लिए आंखों से ही बातें हों तो दुनिया एक शांतिमय जगह हो जाए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुके तो तेरे नैना गीत बहुत दिनों के बाद सुना, उन्हें अच्छा लगा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें नेमत हैं और शायद सबसे कीमती चीज़ जो हैं वो हमारी दो आंखें हैं। ये आंखें हैं जो हर भाषा को पढ़ने का हुनर रखती हैं। जीवन के सबसे कठिन पलों में अपने सबसे करीबी साथी को आंखों ही आंखों में सहारा देकर देखना। जीवन में जिसने आंखों की मूक भाषा पढ़ ली, समझ लो उसने आधी दुनिया का सच समझ लिया। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहां शब्द अधूरे रह जाते हैं, नैनों के इशारे काफी होते हैं। हृदय की अनकही भावना बिना बोले नजर ही कह देती है। आंखों की एक हल्की सी हरकत, पलकों का उठना, शर्मा कर झुक जाना, यही प्रेम की पहली और सच्ची लिपि है, जिन्हें बिना छुए सिर्फ रूह महसूस करती है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि आंखें माँ की ममता भरी नज़र के सामने सब फेल हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में पिता की आंखों की भूमिका ही प्रभाव डालती है। बच्चों और अन्य पर अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आंख ही होती है। आंखों के इशारे से ही प्यार झलकता है, सहम भी जाता है और दुखी भी होता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे कई बार स्कूल कॉलेज में कन्फ्यूजन होता था कि स्कूल की टीचर मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं या पीछे वाले से। ये शायद टीचर जिस तरह से देखा करती होंगी उससे इन्हें ऐसा लगता होगा। हमारे एक और साथी ने एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा लिखा कि सालों पहले मैं मेरे पति का हाथ बटाने शॉप पे जाया करती थी। एक बार एक सेल्समैन आया जिनसे मेरे पति मिलना नहीं चाहते थे। उसने मेरे पति का नाम लेकर पूछा कि भाई साहब नहीं है, कब मिलेंगे। मैंने तिरछी नज़र से उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे मना किया और मैंने सेल्समैन से कहा कि भाई साहब 2 दिन बाद मिलेंगे। 8 दिन बाद वो ही सेल्समैन मुझे मिला तो हंसकर पूछने लगा कि आप इतनी जल्दी कैसे भाई साहब के इशारे को पहचान गई, यानी कि उन्होंने देख तो लिया था लेकिन इस बात का मान रखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हमें नज़रों की भाषा समझ नहीं आती पर नज़र लग जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, नई ब्याहता बेटी बहू को ऐसा लोग कहते हैं, होता भी है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को काजल का टीका लगाती है नज़र से बचाने के लिए। भाई ये भी माँ की ममता का ही एक रूप है। लेकिन कभी कभी जब माँ गुस्से में आती हैं तो उनकी नज़रें देखकर बच्चे का जो हाल होता है वो तो वही समझ सकता है। क्या कैसा ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हमें बताइए। और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसमें आपको पहचानना है कि किस फिल्म का गीत है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे साथियों ने कहा कि नई फिल्म के गीत हैं, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें कभी प्यार छलकाती है, कभी आंसुओं से भर जाती हैं, तो कभी दर्द और बेबसी में सुलगते से अंगारे बन जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा सजा आंखें ही भुगतती हैं, जो हर एहसास को चुपचाप सहती हैं। निसंदेह ये कविता केवल आंखों के मेल मिलाप की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास की कहानी है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। वही हमारे एक साथी का कहना है, कभी जो निगाहें दिल का हाल मुस्कुराकर सुनाती थीं, आज वो पलकें आंसुओं का बोझ छुपाने में थक जाती हैं। वो नैनों की भाषा अब बस खामोशी से रोती है, जब मोहब्बत अधूरी हो तो रातें आंखों में ही कटती हैं। और एक और साथी का कहना है कि कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक नज़र ही काफ़ी होती है, और जब निगाहें मिलती हैं तो जैसे अनकहे इशारों में ही मोहब्बत की कहानी लिख दी जाती है। आंखों में सजते हैं छोटे छोटे सपने, फिर इंतज़ार करती पलकें, और कभी नैनों में प्यार छलकता है, कभी यही नज़रें झुक कर शर्माती हैं तो कभी दूर होकर यादों में बस जाती हैं। इनमें कभी विरह के आंसू उतर जाते हैं और कभी वही आंखें शिकायत बनकर सवाल करने लगती हैं। वही तो आंखों की खूबसूरत भाषा है जिसे दिल पढ़ लेता है, अगर उसे सुरों में ढाल दें तो एक सुरीला मधुर गीत बन जाता है। तो ये तो बात हो गई, एक सुरीला मधुर गीत आपका इंतज़ार भी कर रहा है इस कार्यक्रम में, और आपकी बातें तो आप भेज ही रही हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप नज़रों से या इशारों से कोई बात किसी को कहें लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातें समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, तो क्या करते हैं आप ऐसे मामले में? और हमें पूरा यकीन है कि जो गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आपको पता होगा किस फिल्म का ये गीत है, और नायक का नाम बताएंगे तो और भी अच्छा होगा।

मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नज़रें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफ़र की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ, जो सुरीला सफ़र प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं, कभी प्यार की रोशनी बनती हैं, कभी दर्द की कहानी कह जाती हैं। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नज़र में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती हैं, जो छुपा हो दिल में कर देती हैं इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नज़र लग जाए तो नज़र उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नज़र लग जाए तो आप भी उन्हें नज़र लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आँखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आँखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आँखें आपने देखी हैं हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तू माँ की आँख का तारा था, कभी आँखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं, ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आँखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया, उनकी नज़रें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नज़रों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारी क्लास की बच्चों की नज़रें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नज़रों आँखों और इन बातों पर लिखा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारी एक और साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट

0: माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारी क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों, आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट।
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सो

पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला जो हमने पूछा था और हमेशा मुझे हार मिली है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहाँ घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियाँ हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आँखों से

इशारा करती कि चलो भागो यहाँ से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता है कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे एक साथी कहने, ये आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए, और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली भूरी सुनहरी नीली देखी है, पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी। भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है, ऐसा मानते कि ये छलियाँ हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गई तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने, और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

अपने शहर की सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और बस वाहन चलाने वालों पर एक नजर डालिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने का मतलब है खुद को और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरे में डालना। ये बातें मीडिया के जरिए बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गाड़ी रोककर दो मिनट बात करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो गाड़ी चलाते हुए ही की जा सकती है और खुद को और दूसरों को खतरे में डालना जरूरी है? ए भाई दर्द।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

दरअसल वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की सड़कों को सुरक्षित बनाएं, हम सब यातायात के नियमों का पालन करें, हम सब दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे फैशन, हमारी स्टाइल के अनुरूप क्यों ना बैठता हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बाल खराब हो जाने के डर से या अपना चश्मे की स्टाइल नजर ना आने के डर से हेलमेट लगाना पसंद ना हो, लेकिन हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट के बिना बिल्कुल सफर पर निकलना ही नहीं चाहिए।

तमाम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हरी होने से पहले ही वो अपने वाहन दौड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा वाहन अगर आपके वाहन से टकरा जाएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी। ये सोचना कितना

आएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी? ये सोचना कितना खौफनाक लगता है ना। जो सड़क सुहानी होती है वही सड़क आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। आइए हम अपनी और तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए एक साथ

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल

0: इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने

0: शैक्षणिक क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठनाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
3: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
4: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और

0: सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय

0: तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलाल आबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले को, कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। ला ला ला।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को हैं अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले के लिए प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राज्य सचिवालय में इलाजरी भवन चरण दो का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भवन में अभी 15 कमरे बने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का कार्यालय स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सचिवालय के पास ट्रैफिक की समस्या से भी राहत मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री का जो कार्यालय पुराना था, वहाँ कई बार डेपुटेशन आते थे तो वो वहाँ खड़े रहते थे, इतनी चेयर्स लगाने की भी जगह नहीं थी। इस कार्यालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कार्यालय भी है और विधायकों को बैठने के लिए और आम जनता को मिलने वाले लोग हैं उनका भी कार्यालय है। इसी बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जब कोई मंत्री आता था या मुख्यमंत्री जी आते थे तो जो संजौली से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था, जो छोटा शिमला से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था और बहुत अव्यवस्था हो जाती। इसके बनने से काफी खुली जगह हो जाएगी।
0: विपक्ष के फिजूल खर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यालय किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद का है। उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो इसी कार्यालय में बैठेगा, ऐसे में भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है।
1: विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। विपक्ष ने फिजूल खर्ची वो की है जो 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है। मैंने तो मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया है, 15-20 साल बाद अगर कोई विपक्ष आना का मुख्यमंत्री आएगा तो भी इसी कार्यालय में बैठेगा। कार्यालय जो है ये संस्थान का कार्यालय है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल लोकतंत्र के एक इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, तो संस्थान के कार्यालय।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र ही होगा और मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जाएगा।
1: मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा और इसमें कोई दो राय नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और विभाग भी बदले जाएंगे।
0: मुख्यमंत्री ने पूर्व की जयराम सरकार पर किशाऊ बांध के समझौते के जरिए हिमाचल के संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और बिना किसी शर्त के एमओयू साइन किया गया है। भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड की तर्ज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे हिमाचल को करोड़ों का नुकसान होता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने लड़ाई लड़कर किशाऊ बांध में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत सोलन में भाजपा जिला आयुष चिकित्सक प्रकोष्ठ द्वारा 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस के उपलक्ष्य पर एक मेगा निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा

0: शिविर लगाया जाएगा। प्रकोष्ठ के संयोजक लोकेश ममगई ने बताया कि सोलन के ठोडो मैदान स्थित नगर निगम के हॉल में लगाए जाने वाले इस स्वास्थ्य जांच शिविर में विभिन्न तरह की जांच निशुल्क कर दवाइयां भी मरीजों को दी जाएंगी। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेले हमारी समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक समरसता के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है। राजेश धर्माणी ने बाड़ूदेव मेला कमेटी भेल कुठेड़ा द्वारा आयोजित दो दिवसीय मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में कल बतौर मुख्य अतिथि ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व और विकसित भारत के लक्ष्य में उनकी सक्रिय भागीदारी पर संवाद व विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम में CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर SK यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने युवाओं से ज्ञान, नवाचार, अनुशासन व सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य वक्ता डॉ. योगेंद्र प्रताप धामा ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से संवाद किया और युवाओं से पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण व नागरिक कर्तव्य को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और राष्ट्र के समग्र विकास में उनकी सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
4: ग्यारहवां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। इसके साथ एक स्वास्थ्य एक भविष्य का व्यापक दृष्टिकोण जुड़ा है। ये विचार मानव स्वास्थ्य को व्यक्ति तक सीमित न रखकर समुदाय, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य से जोड़ता है। आज दुनिया में स्वास्थ्य की अवधारणा तेजी से बदल रही है। स्वास्थ्य का अर्थ अब केवल बीमारी होने पर उसका उपचार करना नहीं रह गया है। बीमारी की रोकथाम, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, शारीरिक सक्रियता, मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में आयुर्वेद के निवारक और समग्र स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं विशेष चर्चा में हैं। आयुर्वेद में लंबे समय से संतुलित जीवन, उचित खानपान, दैनिक दिनचर्या और प्रकृति के साथ सामंजस्य को स्वस्थ जीवन का आधार माना गया है। वर्तमान समय में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, चयापचय संबंधी विकारों, तनाव और अन्य गैर संचारी रोगों की चुनौती बढ़ रही है। ऐसे में स्वस्थ आदतों और रोकथाम पर आधारित दृष्टिकोण का महत्व और बढ़ जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में कहा है कि आयुर्वेद केवल भारत की विरासत का उत्सव नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं से जोड़ने का अवसर भी है। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें बीमारी के उपचार के साथ साथ स्वस्थ आदतों

0: उचित आहार, दैनिक दिनचर्या, मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य को भी महत्व मिले। आयुर्वेद को भविष्य के स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए परंपरागत ज्ञान के साथ आधुनिक शोध और वैज्ञानिक प्रमाणों का समन्वय भी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद से जुड़े उपचारों और पद्धतियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, नैदानिक साक्ष्य और गुणवत्ता मानकों का पालन इसकी विश्वसनीयता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सरकार ने आयुष प्रणालियों को संस्थागत आधार देने के लिए वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। इसके बाद आयुर्वेद और अन्य आयुष पद्धतियों के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्ता आश्वासन और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में आयुष सेवाओं के एकीकरण तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार को भी रोकथाम व समग्र स्वास्थ्य सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। आयुर्वेद की पहुंच अब भारत तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद दिवस के माध्यम से भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत किया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक स्वास्थ्य, वेलनेस और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति रुचि बढ़ी है। ऐसे में आयुर्वेद के लिए वैश्विक स्तर पर संवाद और सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद के विस्तार के साथ वैज्ञानिक विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए मजबूत शोध, नैदानिक प्रमाण, गुणवत्ता मानक, जिम्मेदार संचार और प्रभावी नियामक व्यवस्था आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शोध के माध्यम से आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक स्वास्थ्य एक भविष्य की अवधारणा स्वास्थ्य को पर्यावरण से भी जोड़ती है। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठाइए।
2: ये मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
3: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
4: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
3: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन डाले, मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक

0: वक्त निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और

0: आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुतामय बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है
1: जी।
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीज़ों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज़ को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीज़ों के साथ में बहुत चीज़ों को हल्के में लेती हैं,
1: हाँ।
0: और जब हल्के में हम चीज़ों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत
1: जी।

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
3: और हमें तो याद है ये सारी चीज़ें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें ख़त्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरें नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज़ इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज़्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर के ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीज़ें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से ज़रूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है, और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा

0: उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
1: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नज़र आ रही, रोज़ के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पर हम छोटी मोटी चीज़ें भूलते हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है, किस जगह हैं आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: और कई बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है। हमें कोई चीज़ किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज़ हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज़ का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है, तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता। तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग नज़रअंदाज करते भाई समय है, उम्र बढ़ रहा है तो ये चीज़ें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
1: हाँ, जैसे कि हम रोज़ाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज़्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीज़ें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियाँ जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियाँ हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
0: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
0: तो देखियो ना, मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में और शांति दिवस का संदेश में पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज़ को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश वो ज़रूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ, और जैसा कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा। और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्रवाई भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके ये काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता। इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा
1: जी।
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल, यानी कि शांति का घंटा, वो बजाया जाता है। और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरधार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफ़ेद कबूतर होते हैं ना, शांति का प्रतीक माना जाता है, उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सब का काम है, नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली, यानी सखी यानी मेरी धर्म पत्नी, शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा
0: जी,
1: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है। क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज
0: जी।
1: तो ऐसा वो भी बनाए रखे शांति, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की, और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था, घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना। तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे।
1: बिल्कुल सही बात है, आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए, और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं।
0: हाँ।
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ।
1: और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला, और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज़्यादा नहीं
0: कुछ
1: होता।
0: भी नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है
0: मलाई
1: वैसा वाला
0: जी।
1: दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है, एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें, पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकाल कर सुखा लेना है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आँच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है। और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए, और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची ये सारे मसाले एक साथ डाल देने हैं। कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आँच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है, सूखे मसाले ना जलें। इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है
0: जी।
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए, और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है, धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है, या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए, और गर्मा गर्म ल्योदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से।
0: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोज़मर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहाँ मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियाँ, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताज़ा होता है, तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है, सब्जी को आप हल्का सा तोड़ कर या काट कर

0: आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है
1: जी
0: उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी
1: ल्योदूर
0: हूँ ल्योदूर
1: चमन
0: चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताज़ी
1: जी
0: सब्जियाँ जिस तरह से थोड़े से मसालों के
1: हाँ
0: साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन मुझे
0: हाँ
1: लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
0: बिल्कुल।

0: चंचल जी, हमारी एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोज़मर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो बस
0: अपना
1: आप
0: ख्याल
1: समय पर
0: रखें।
1: उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना। और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज़ इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुँचेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूँगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए। और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का ज़माना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज़ क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीज़ें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुँच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ब्रेन में खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलते हैं, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, आंसर इज यस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा,

0: बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30, 35, 40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं।
1: जी
0: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में। ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का, तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है।
1: ओ
0: मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से 1 मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं।
1: जी
0: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अस्पताल ज़्यादा हो रहे हैं, सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज़्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफ़ी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए
0: करेक्ट, अच्छी है,
1: हैं।
0: बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज़ के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको। फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफ़ी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज़ को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं बिल्कुल,
0: करेक्ट करेक्ट। तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक
1: जिस
0: ही
1: पर?
0: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, रक्तदाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का,
1: जी
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: जी
0: बट जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफ़ी पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाते हैं।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: तो ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी। पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं।
1: ओहो
0: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज़्यादा होती है। तो
1: जी
0: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
1: ठीक है।
0: रिकवरी का जो समय है वो काफ़ी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेन को
1: ओ
0: इम्पैक्ट करता है। तो
1: जी
0: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज़ बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल ख़राब बीमारी, बट राइट इज़ कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश,
0: स्ट्रोक
1: प्रयास किया जा सकता है ठीक करने का?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
1: ओ
0: में मोच आ गई,
1: जी जी
0: उसके कारण
1: जी
0: मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है।

0: थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफ़ी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहाँ से न्यूरो के सेंटर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो
1: जी।
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफ़ी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुँचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर अजीत हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध
0: खून
1: है?
0: अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयाँ, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
1: जी जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छा है, काफ़ी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
1: जी जी। तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
0: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफ़ी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो, तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज़ है। बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना। क्यों, क्या दिक्कत होती है, जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है। तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फ़ोन पे एक बार बात कर लूँ। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक ज़माना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना? तो
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फ़ोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूँगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो, वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए। बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए, उससे
1: जी।
0: भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी।
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, वो ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, और हम एक ज़रूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव साथिया तूने क्या किया बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम।
1: जी, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना ज़रूरी होता है? तो
1: दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको 1-2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफ़ी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को 1-2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाता है। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफ़ी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज़ 2 अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए,
1: तो वो जो ये जो है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए। तो जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बट जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है आप वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
0: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
1: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया, डॉक्टर मुझे ज़बरदस्ती दवाइयाँ खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन, क्लोपिडैप, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ज़बरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फ़ायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमज़ोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं। तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, 2-5 साल। और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू। 2000 एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग, किडनी, लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए। अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो।
0: बिल्कुल, और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
1: अब मैं सुनना चाहूँगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
0: जी सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना
1: जी हाँ
0: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज़ वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
0: तो दवा
1: तो
0: ले लो।
1: नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो हैं उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सीटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई दे, दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आँखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ, वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: जी
1: अदरवाइज अभी भी ऐसा है 90-95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं।
0: जी
1: और दवाइयाँ ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े, कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फ़ोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयाँ जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज़ ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज़ ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफ़ी लंबा चलता है।
0: जी जी
1: तो काफ़ी लोगों को कॉफ़ी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफ़ी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी, सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से भी होता है?
1: जैसे मैंने बताया चश्मा, नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल करवाना
0: जी,
1: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से
1: तो
0: सिर दर्द।
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत है पेट की, पेट में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
0: जी,
1: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूँ। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज़ है, मैं लिख दूँ 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
0: जी,
1: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप

0: घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है। उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एबसेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं? काफ़ी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफ़ी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल ICMR जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकता है प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो बट उनके जो चलने का पैटर्न है डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहा है, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
1: अच्छा
0: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफ़ी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
0: करेक्ट।
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाएं हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज़ का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूँगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज़ में है
0: जी
1: ये गाना।
0: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही अच्छी चीज़ है कि ओवर

0: जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम हैं। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
1: जी
0: ब्रेन ट्यूमर इज़ हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है,
1: जी
0: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण ख़राब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज़ नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है।
1: ओ
0: तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो
1: कैंसर
0: मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे, तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
1: जी
0: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और
0: तो जैसे ब्रेन
1: अचानक?
0: स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत, ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। नॉन
1: दबे
0: स्पेसिफिक
1: पांव आने
0: मतलब
1: वाली बीमारी।
0: करेक्ट। तो काफ़ी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयाँ खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो अब पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीज़ें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो अब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए,
1: जी
0: पेरीफेरी में, वहाँ MRI छोटे आपको न्यूरो के पास पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता है,
1: जी
0: तो हर
1: जी
0: एक का MRI करना मुश्किल होता है।
1: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं
0: ऐसे
1: जिससे?
0: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप दे के रखे हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज़्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो एक ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही ज़रूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे श्रोताओं को ना पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है
0: हाँ,
1: जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी।
1: तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन। तो इसमें शब्द नाइफ यूज़ किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं हैं जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी। तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी जो हम बोलते हैं, 10-15 दिन आराम कीजिए। जो भी टाँके हैं सिर पे, वो 2 हफ्ते बाद निकाल के महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं, उनका चलना फिरना, खाना, बाहर की लाइफ एक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते

0: ले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये दो तीन चीज़ में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक एक
1: जरूरी?
0: लक्षण है उसका। काफ़ी बार हमने एमआरआई किया, पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे, एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए।
1: जी
0: बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है।
1: जी
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है
1: जी
0: वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ।
1: जी
0: तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
1: जी जी
0: तो वहाँ अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफ़ी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: तो
0: उसे
1: उसके क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं
1: ट्यूमर
0: गांठ।
1: वही
0: तो
1: है
0: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर है ऐसा नहीं है।
1: जी।
0: जैसे बाकी के शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए, कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है।
1: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है, कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है।
1: और
0: तो
1: फिर
0: उसके
1: इसका
0: हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज़ उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज़ ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम
1: जी
0: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
0: ऐसा
1: है?
0: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज़ वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना ज़रूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
1: जी
0: पीने से कोई संबंध, आंसर इज़ नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ ख़राब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता।
1: जी
0: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज़ नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है? किस तरह की डाइट
0: स्ट्रोक,
1: जो?
0: यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिन्जियोमा, तो वो
1: जी
0: सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है। और ट्यूमर

0: तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहा वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है, जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज़ बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप
1: जी
0: जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े। तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज़ बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डाइग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक
1: जी
0: बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज़ें, नशा बंद कर दो, बहुत फ़ायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों
1: बिल्कुल
0: में कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियाँ जो है सिकुड़ती जाती है। तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेनजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट
1: बहुत फायदेमंद बात है ये।
0: करेक्ट तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे छोटे सिटी में भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया। और दिक्कत है कि उनका इमिडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो
0: बिल्कुल,
1: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
0: तो
1: जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है। तो वो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेम्बर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हॉर्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो, जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय, नाइट टाइम है। तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज़ हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक येस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी वन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयाँ इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो मूवमेंट अजीब सा होता है, तो ये क्या कोई न्यूरो
0: रिलेटेड ही है? उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60 प्लस एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगते हैं। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया, उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज़ करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जब भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं। बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाली

0: उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: 4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
3: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर करता है। इसमें भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
4: Today we have around 1150.
5: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: Which will make a big change in times to come.
3: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। जापान में एशियाई खेलों में आज पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हराया। भारत के लक्ष्य

0: चौथा आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह के युगल स्वरों में ये भजन आप सुन रहे थे, जिसे हमने लिया था फिल्म गीत गाता चल से। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन, और अब लेते हैं एक ब्रेक, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करें?
2: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
3: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निःशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
6: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
5: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
6: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
5: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में गाए इस भजन के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा। आज है सोमवार और आज हम बात करते हैं नई उड़ान पर। जब हम नई उड़ान की बात करते हैं तो हमारे सामने आसमान की वो असीम ऊंचाइयां आती हैं जहां कोई सीमा नहीं होती। आज का युवा पारंपरिक रास्तों को छोड़कर अपनी काबिलियत के दम पर नई राहें बनाता है, चाहे वे डिजिटल इंडिया के तहत स्टार्टअप शुरू करना हो या खेलों में देश का नाम रोशन करना हो या फिर नई तकनीकों जैसे AI और स्पेस टेक को अपनाकर दुनिया में भारत का लोहा मनवाना हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज के दौर में नई उड़ान का मतलब सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलना और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। संसार की ये अपने संसार में कई योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज युवाओं के पंखों को हवा दे रहे हैं। लेकिन साथियों, हर उड़ान की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। असफलताएं रास्ते में आएंगी, पर याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने भीतर के डर को पीछे छोड़कर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, यही युवाओं का लक्ष्य होना चाहिए। ये समय आपका है, मंच आपका है और आसमान भी आपका है। तो आज हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आए हैं इसी विषय पर, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये गीत।

0: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
1: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
0: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा।
2: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
3: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने पहले कहा था, नई उड़ान में आज हम आपको मिलवाएंगे एक नई शख्सियत के साथ।
4: कुछ लोग अपनी बात शब्दों से कहते हैं और कुछ लोग रंगों से। किसी के हाथ में ब्रश आता है तो खाली कैनवस सिर्फ कैनवस नहीं रहता, उसमें एक सोच, एक एहसास और एक कहानी अपने आप उतर आती है। और आज के युवा मंच कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही युवा साथी के साथ जिसने रंगों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें अपनी पहचान और अभिव्यक्ति का हिस्सा भी बनाया। तो चलिए जानते हैं उस दुनिया को जहां हर रंग की अपनी आवाज है और हर तस्वीर के पीछे छिपी है एक कहानी। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम युवा मंच में। और हम सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान संजीव कुमार जी का। सबसे पहले आपका स्टूडियोज स्वागत है संजीव जी।
5: थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ आकाशवाणी में बोलने का मौका दिया।
4: सबसे पहले यही हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में और चित्रकला के क्षेत्र में आपकी जो यात्रा

0: शुरू हुई उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: सबसे पहले मैं स्कूल टाइमिंग में एग्जीबिशन तो नहीं कर पाया, मगर स्कूल टाइम में जब मैं काम करने शुरू हुआ तो मुझे सुबह सिंह आर्ट गैलरी में जाने का मौका मिला
0: जी।
1: और वहाँ पे मैंने कंपटीशन वगैरह अटेंड किए, तो वहाँ कंपटीशन अटेंड करने के बाद थोड़ी प्रेरणा जागी, लोगों का काम देखा और जी। साथ में वहाँ जो उनकी अपनी सुबह सिंह जी की पेंटिंग्स लगी हैं उनको देख के थोड़ी प्रेरणा जागी, तो करते करते फिर मैंने प्लस टू किया। उसके बाद मैं यहाँ धर्मशाला कॉलेज में हमारे गुरुजी श्री सुरेंद्र शर्मा जी उनके साथ मतलब मैंने काम किया और 3 साल उनके साथ अंडर काम करके काफी कुछ मैंने उनसे सीखा। फिर मैंने मास्टर डिग्री की, वहाँ मैं सेकंड टॉपर था। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू एग्जीबिशन करने शुरू की, करते करते आज 20-22 सालों में काफी मतलब नेम फेम मुझे इस आर्ट की फील्ड में ही मिली है
0: जी। आपसे जानना चाहेंगे संजीव जी, बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: मैं कांगड़ा प्रॉपर बाजार शहर के साथ, मेरा एक छोटा सा गांव है रिलेशन के साथ, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी आर्ट की फील्ड का था नहीं, फिर भी मैंने एक शौक से ही करते करते अपनी जो लाइफ की मेरी अभी जर्नी है उसमें मैंने काफी मतलब इसी फील्ड में नेम फेम बनाई है। स्टार्टिंग से जो हमारे प्राइवेट कोई डेकोरेशन का काम करते हैं या कोई मूवी का काम करते हैं तो मुझे बुलाते हैं, मैं वहां काम करता हूं और लगभग ऑल राउंडर हूँ। कार्टून भी बनाता हूँ, पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, पेंट ड्राइंग भी करता हूँ और साथ में एग्जीबिशन भी करता हूँ
0: जी। बहुत से युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे, युवा जो है यूथ है उनके लिए अगर चित्रकला में अपना फ्यूचर बनाने की वो सोच रहे हों तो किस तरह से उन्हें करियर चुनना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता हासिल करें?
1: प्लस टू से जो स्कूलिंग टाइम है हमारा उसमें बच्चे का पता लग जाता है कि अगर वो किस फील्ड में जाना चाहता आगे, तो स्टार्टिंग में जो ड्राइंग टीचर जो हमारे होते हैं उनको कंपटीशनों में लेके जाते हैं तो होता उनका भी आगे से आगे कोई किसी का रुझान होता है
0: जी।
1: आज के टाइम में खैर जो ये पेंटिंग फील्ड है इसमें मतलब प्रॉपरली कोई बंदा इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्लस टू के बाद फाइन आर्ट वाली डिग्री कर सकते हैं। इसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री होती है
0: जी,
1: वो 4 साल की होती है। आप चंडीगढ़ कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, हिमाचल में अगर करना हो आपने तो BA पेंटिंग के साथ धर्मशाला जहाँ से हम खुद भी मतलब ग्रेजुएट हुए वहाँ का, वहाँ जाके कर सकते हैं, शिमला से कर सकते हैं, सोलन कर, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है लिमिटेड कॉलेजों में होता है और करने वाले बच्चे जो हैं वो करते हैं। अभी मेरे एक दो स्टूडेंट थे, मैंने उनको गाइडलाइन की थी तो अभी वो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्सटाइल में उनकी एडमिशन हुई, वो उसमें कैरियर बना रहे हैं। इसमें आप कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, फिर ड्राइंग टीचर आर्ट टीचर भी बन सकते हैं, नवोदय स्कूल में जा सकते हैं आप या फिर सेंट्रल स्कूल में जा सकते हैं। अब हाल ही में जो हिमाचल गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड चलाया कि जो इसमें भी सेंट्रल स्कूल कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें भी आर्ट टीचरों की जरूरत है और मतलब आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद उसमें फील्ड में अपना नेम फेम भी बना सकते हैं और एक आगे तक जाके अपना कैरियर बना सकते हैं।
0: आपने अभी बात की मेरे स्टूडेंट, ये शब्द आपके मुंह से हमने सुने, तो आप किस तरह से मतलब आपका कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ ऐसा?
1: मेरा अपना स्टूडियो था उसमें मैं काम सिखाता था, 2 साल मैंने ITI एज इंस्ट्रक्टर भी काम किया, तो उस टाइम के भी कुछ मेरे स्टूडेंट थे। फिर इत्तेफाक से अब मेरा वर्तमान में मैं ट्रांसपोर्ट में एज ए जूनियर टेक्नीशियन अपनी जॉब करता हूँ, पर वो एक मेरा अपनी जॉब है, पर इसके अलावा मेरा जो आर्ट का फील्ड है मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि ये आर्ट की का जो कीड़ा होता है वो खत्म तो होगा नहीं, डे बाय डे मतलब चाहे आप कैनवस करो या पेंसिल से करो, कलरों से करो, वाटर कलर से करो, इसमें बहुत सी मतलब हमारी फील्ड है जिसमें आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। जैसे वाटर कलर में करना हो तो आप लाइट टू डार्क चलते हैं, और जैसा हम अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल में हम डार्क टू लाइट चलते हैं, पहले डार्क कलर करेंगे उसके बाद उसमें डिटेल निकालनी है तब हम उसको लाइट शेड की तरफ लेके आते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा जो फैब्रिक कलरों का वाला काम होता है वो कपड़े के ऊपर होता है, फिर हमारा जो क्या बोलते हैं कैनवस के ऊपर जो काम होता है वो ऑयल कलरों से होता है, फिर एक्रेलिक कलरों से होता है
0: जी।
1: तो इस तरीके के है हमारे एक मीडियम है जिससे मैं हम मतलब आर्ट की फील्ड का कोई भी बंदा वो काम करता है।
0: जिस तरह डांस की अनेकों अनेक फॉर्म्स हैं ना, उसी तरह पेंटिंग में भी अलग अलग तरह की फॉर्म्स हैं जी। संजीव जी आगे ये बताइए, जैसे कोई इंसान है जिसे बचपन से ही रुझान है इस तरफ और वो इसे एज सब्जेक्ट नहीं ऑब्टेन करना चाहते, इसे ऐसे ही आगे तक रखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते रहें और साइड बाय साइड करें, लेकिन विषय के तौर पर उन्हें नहीं लेना है, तो इसमें भी उन्हें सफलता मिल सकती है या विषय
1: इसमें प्रैक्टिस है, मेन काम प्रैक्टिस ही है, क्योंकि आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ही इम्प्रूवमेंट होगी, और इम्प्रूवमेंट होते आप कंटिन्यू काम करते करते एक ऐसा लेवल आता कि उस लेवल पे पता लग जाता कि ये किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है।
0: जी बिल्कुल, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हिंदी में अगर कहा जाए तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
1: जी,
0: और अभ्यास किसी भी क्षेत्र में हम करते हैं तो हम पारंगत हो ही जाते हैं। संजीव जी, थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, और जब चित्रकला की बात हो रही है, पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत है जो इस विषय से जुड़ा हुआ है, वो गीत हम अपने युवा दोस्तों को, श्रोताओं को सुनाएंगे, और बाकी की बातचीत इस गीत के बाद करेंगे।

पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं और संजीव कुमार जी हमारे साथ आज हैं और यूथ को इस विषय पर यानी पेंटिंग के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं और कैसे इस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं, इस बारे में हमें बता रहे हैं। संजीव जी, आजकल का डिजिटल दौर चल रहा है और इस दौर में

0: नंबरिक पेंटिंग और डिजिटल आर्ट, इन दोनों में क्या अंतर है?
1: प्रेजेंट में तो मैं ऐसा था कि जैसे हम शुरू से पेंसिल से ही हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि पेंसिल पकड़ने अगर आपको आ गई ना, तो किसी टाइम में होता था कि वो हम एक लकड़ी से वो कलम बना के उसको करते थे, मगर आज का जो टाइम है पेंसिल से शुरू होती है, बच्चा कोई भी है। तो जो डिजिटल है वो डिजिटल में तो आप किसी भी चीज को डाल दो, प्रिंट उसके निकल के आ जाएगा, होगा तो बड़ा बड़ा जल्दी, मगर जो ओरिजिनल आर्ट है उसको हम ओरिजिनल आर्ट थोड़ी बोल सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो अपने हाथों से बनाई चीज होती है उसका एक अलग लुक होता है।
0: तो करियर के रूप में जब आपने ये विषय अपनाया, इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने?
1: चुनौती मैम इसमें ऐसा होता है कि अब सिंगर है तो वो तो गाना गा के स्टेज शो करके मतलब अर्निंग कर लेता, इसमें आर्ट के फील्ड में ऐसा नहीं है। आर्ट के फील्ड में आपको स्टार्टिंग में पैसा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कैनवस लेंगे तो मुझे नहीं लगता 1000 रुपए से कम कोई आज के टाइम में कैनवस छोटा होगा, तो उसके ऊपर फिर वो जो हमारी काम करने की जो रूपरेखा शुरू होगी उसमें कलर भी कॉस्टली होते हैं, करते करते इकट्ठा अगर आपने एग्जीबिशन करनी है तो उसके लिए आपके पास फाइनेंशियली चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, पर मैंने होटलों में काम करने शुरू किया, होटलों की वॉल पेंटिंगों का काम करने शुरू किया, तो मतलब ऐसा है कि काफी होटलों में मेरी पेंटिंगें हैं उनके हैं, तो काम जो है वो दिखता है।
0: कोई भी हमें हुनर है वो अपने आप बोलता है। संजीव जी, ऐसा कोई गीत हो जो आपको पसंद हो, आप सुनना चाहें?
1: मैं जॉन इब्राहम को वो नहीं मानता, पर मतलब थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, जॉन इब्राहम की मूवी एक परमाणु, उसका सॉन्ग है जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ये सॉन्ग जो अगर श्रोताओं को सुनाइए आप।
0: जी, आपको भी और युवा दोस्तों को ये गीत सुनवा रहे हैं, और बातचीत इस गीत के बाद जारी।

0: जी संजीव जी, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा कोई मोमेंट आपकी जिंदगी में आया हो जो आपको बेहद आपने गर्व महसूस किया हो कि आपने इस क्षेत्र में आगे बढ़कर बहुत सही फैसला लिया है?
1: हाँ जी मैम, मुझे सबसे पहले मुझे अच्छा लगा था कि मुझे जब नेशनल अवार्ड दिल्ली में मिला था प्रगति मैदान में, उस टाइम दिल्ली की मुख्यमंत्री शायद शीला दीक्षित होते थे, उनके
0: जी
1: हाथों
0: जी
1: मिला
0: जी
1: था। और मुझे उस टाइम थोड़ी खुशी महसूस हुई थी कि नहीं, आर्ट की फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं और एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम मैं सचिन तेंदुलकर जी से मिला था लाइव, उनको देख के भी मुझे थोड़ा खुशी हुई कि आज एक ऐसा बैट्समैन जो कि खेल रत्न से
0: जी
1: सम्मानित है,
0: सम्मानित,
1: उसके साथ मैं आज रूबरू हो रहा हूँ।
0: जी, और बहुत
1: और
0: लोगों की इंस्पिरेशन है वो।
1: होता है,
0: जी
1: बाकी काफ़ी मैंने स्टार लोगों के साथ काम किया, डेकोरेशन का काम किया, पहाड़ी मूवी में काम किया, पंजाबी मूवी में काम किया,
0: जी
1: डेकोरेशन से लेकर उनकी कटिंग से लेकर, रणवीर कपूर जी की मूवी थी रॉक स्टार्स के में मैंने काम किया, वहाँ
0: जी
1: झंडे की जो कटिंग है, जो आपका गाना वो साडा इत्थे रख, उसमें जो
0: जी जी
1: झंडे
0: जी
1: कटिंग है वो उसमें मैंने मेरा हाथों का किया हुआ काम है वो। साथ
0: जी
1: में रॉक स्टार मूवी एक प्रियंका चोपड़ा की, प्रियंका चोपड़ा थी हाँ जी, उसकी मूवी थी, उनमें मैंने अपना काम किया था, नगरोटा सूरिया करके एक जगह हमारे कांगड़ा में,
0: जी बिल्कुल।
1: तो वो वहाँ मसरूर का जो रॉक टेम्पल है वहाँ पे मैंने
0: जी
1: उनके साथ काम किया था।
0: तो ये तो हुई बात की आपकी अचीवमेंट है और आपको प्राउड फील होता है।
1: हाँ जी मैम,
0: कोई ऐसा मुकाम आया जब हताश या निराश आप हो गए हों जिंदगी से, आया
1: आफ्टर
0: है?
1: ग्रेजुएशन थोड़ा सा लगता था कि इस फील्ड में कैसे फ्यूचर बनेगा, तो उस टाइम काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था, सेल
0: जी
1: आउट नहीं होता था। फिर
0: अच्छा।
1: मुझे कुछ एक लोग ऐसे मिले शिमला में, मतलब चाहे मेरे अपने गुरुजी हैं चेयरमैन श्री हिम चटर्जी, जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट
0: जी
1: बेंगलोर
0: बिल्कुल।
1: के आजकल वाइस
0: जी
1: चेयरमैन
0: जी
1: है,
0: जी बिल्कुल।
1: तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मुझे उसने ऐसा गाइड किया कि हमारा जो काम है उसको हम सेल आउट कैसे कर सकते हैं, वो भी उन्होंने मुझे तरीका बताया। उसके बाद मेरा काम काफ़ी होटलों में बिका, शिमला
0: जी
1: में भी, धर्मशाला में भी, और जहाँ मुझे कोई ऑर्डर करता है मैं अभी भी काम करके उनको जो है वो पैक करके भेज देता हूँ और पैसा वो मुझे गूगल पे कर देते हैं।
0: वह जैसे बात कर रहे हैं कि अपनी पेंटिंग्स को कैसे बेचा जाए, मतलब उन्होंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप
1: हाँ
0: अर्निंग
1: जी
0: कर
1: हाँ जी
0: सकते हैं,
1: जी
0: तो आप हमारे जो सुनने वाले यूथ है, युवा हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा बताइए कि शुरुआती कैसे वो अपनी कलाकृतियों की जो है उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, बेचने का कुछ तरीका उनको इस हुनर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: इसमें ऐसा होता है कि अगर आप मतलब फाइनेंशली स्ट्रांग नहीं है इसमें, जैसे आप तीन चार लोग इकट्ठे होकर शो कर सकते हैं। यहाँ हमारे हिमाचल में तीन म्यूजियम है, एक धर्मशाला कांगड़ा का जो म्यूजियम है, एक यहाँ पे है, एक शिमला में म्यूजियम है और एक कुल्लू में है, तो फिर मतलब वो हमारे जो म्यूजियम है यहाँ पे, तो गेटी थिएटर है हमारा शिमला का, तो वहाँ आप गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करके अगर आप डिस्काउंट वगैरह कर सकते हैं वो, तो फिर वहाँ पे एग्जीबिट आप अपना काम कर सकते हैं, और काम अगर अच्छा करते हैं आप तो काम अपने आप बोलता है और काम बिकता, लोग काम को खरीदते हैं।
0: जी बेशक कुछ समय लगे
1: टाइम
0: लेकिन
1: लगता है इन चीज़ों
0: जी
1: के लिए, पर मतलब एक टाइम आता है कि हम उस लेवल तक पहुँच ही जाते हैं।
0: पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ माता पिता जो होते हैं वो इस क्षेत्र में, या फाइन आर्ट का कोई भी क्षेत्र है,
1: हाँ जी मैम,
0: डांसिंग है, अपना म्यूजिक में आप आगे परस्यू करना चाहते हैं, या चित्रकला की हम बात करें, तो लोग नहीं समझते जाना अच्छा, वो कहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट लीजिए, साइंस पढ़िए, तो ऐसे माता पिता जो हैं जो इस क्षेत्र में जाने से अपने बच्चों को रोकते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना
1: उनके
0: चाहेंगे?
1: लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि काम कोई भी है वो छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: एक मतलब टाइम आता है कि चाहे सिंगर एक लास्ट टाइम तक उसकी आवाज़ में, मत थोड़ा सा जब एज हो जाती है तो थोड़ा आवाज़ में लगता है उसको कि मेरी आवाज़ जो अब गले में दर्द, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं
0: जी
1: होने, मगर ये हाथों का ऐसा काम है कि जितना आप करते जाएंगे, बेशक आप 60 से अब भी हो जाएंगे तो भी आपका काम जो है ये सुधरता ही जाएगा कंटिन्यू, और
0: जी
1: इसको करते करते करते करते आप इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो मतलब काम आपका सुपीरियर होता जाएगा डे बाय डे, ये काम रुकेगा नहीं।
0: अंत में युवाओं और कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं इस समय हमें सुन रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेरणादायक सा संदेश आप देना चाहेंगे जिससे उनको बिल्कुल से एकदम से कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी संकोच के?
1: मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप काम करने के किसी भी फील्ड में शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे,
0: जी
1: मगर कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी फील्ड को चुन लेते हैं उसमें जितना आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, करते करते एक अभ्यास करते करते आपको अपने आप ही अंदर का एक बोलते हैं ना कलाकार जग जाता उस आदमी का, फिर वो आदमी पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और मैं यही युवाओं को संदेश दूंगा कि आप चिट्टे वगैरह से दूर रहिए, और क्योंकि ये एक अभिशाप है, और मैं फ्यूचर के लिए कि यही बोलूँगा उनको कि भाई अगर आप आर्ट की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी स्कोप है, आप कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे एक संदेश के साथ आपने आज की ये बातचीत ख़त्म की है। स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे युवा दोस्तों के साथ साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया संजीव जी।
1: धन्यवाद जी मैम जी।
2: तो युवा साथियों, इसके साथ ही आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओ, सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा क्राइंदियां। और किसान व बागवान भाई बहनों के लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:10 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे 8:00।

एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गीत आपको सुनवाए जाएंगे रात्रि 9:15 पर, और 9:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ों की गूंज। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या न्यूज एट 9 रात्रि 9:00, रात्रि 10:00 आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की डेली हाइलाइट्स जो कि आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएंगी, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम के 6:00 को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सो गर्ल क्या हो रहा है?
1: फेल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
2: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30% और क्लास 1 व 2 के लिए 15% डीए की अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। आज शिमला में पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और सरकार अपने वित्तीय अनुशासन के कारण डीए देने में सक्षम हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल को आरडीजी मिल गई होती तो कर्मचारियों व पेंशनरों के लंबित एरियर का पूरा भुगतान कर दिया जाता।
1: मैंने ये फैसला किया है, क्लास 3 के जो पेंशनर हैं 1/16 के बाद 31/1/2022 तक के, उनको 30% एरियर और क्लास 1 क्लास 2 के 15% की एरियर की नोटिफिकेशन आज ही कर दी जाएगी। प्रदेश अपनी वित्तीय स्थिति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, मुश्किल दौर गुजर चुका है, अब धीरे धीरे हम अच्छे दौर की ओर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग इसमें साथ दें, सहयोग करें, धीरे धीरे सबकी पेंशन एरियर डीए सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कोई मेडिकल रिवर्समेंट में कोई पैसे की कमी नहीं है। ये ठीक है कि आरडीजी कटने के बाद कम्यूटेशन लीव इनकैशमेंट और एरियर में जो थोड़ा कमी आई है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर किशाऊ बांध परियोजना के समझौते के जरिए हिमाचल के संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और बिना किसी शर्त के एमओयू साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड की तर्ज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे हिमाचल को करोड़ों का नुकसान होता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने लड़ाई लड़कर किशाऊ बांध में जीत हासिल की।
2: जयराम ठाकुर जी ने जो समझौता किया उस समझौते को मानने से जब हमारी सरकार आई हमने मना कर दिया, और ये समझौता 4 बैठके तो मेरे साथ होगी, आपको 12% बिजली फ्री रॉयल्टी देंगे, हमने कहा ये भी नहीं हम मानते। और अमित शाह जी के पास तो मैं सामने था ना, मैंने वो अपनी बात अड़िग से रखी, हिमाचल के साथ जो समझौता किया और हिमाचल के तकरीबन ये जो 412 मेगावाट है इसमें 6-7 हजार करोड़ रुपया बिजली बनाने का आएगा, और बिजली बनाने के बाद इससे जो 1200 करोड़ रुपया बिजली का हमको पैसा मिलना शुरू होता तो 600 करोड़, लेकिन ये 5 साल बाद बनकर तैयार होगी तो 1200 से 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा। जयराम जी है चाहे और कोई राम जी है, सब झूठ बोल रहे हैं।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पर तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने और परियोजना का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से संभव हुआ है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार इस परियोजना की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन परियोजना के वास्तविक वित्तीय प्रावधानों और केंद्र सरकार के योगदान को सामने नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15,624 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जल घटक की 12,096 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था है, जो इसे आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
3: इस परियोजना की कुल लागत वो 15,624 करोड़ रुपया है, उसमें जो जल का घटक है उसका अमाउंट है 12,096 करोड़। 12,096 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार बियर कर रही है। अब स्कीम का सबसे बड़ा कंपोनेंट वो केंद्र की सरकार बियर कर रही है। मेरा सीधा सीधा और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप है कि वो वास्तु स्थितियों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं।
0: भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अणु खेल मैदान व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक ने बताया कि ये भर्ती रैली हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। इसी के साथ

0: के समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। सुरमई सांझ में हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है और आज के इस संगीत के सफर में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा। तो

चिराग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं कहते हैं कि एक बेटी के लिए उसके पिता उसका सबसे पहला हीरो और उसकी पूरी दुनिया होते हैं, और एक पिता के लिए उसकी बेटी उसकी जान होती है। लेकिन दस्तूर दुनिया ऐसा है कि एक दिन उसकी लाडली को अपने बाबुल का आंगन छोड़कर जाना पड़ता है। विदाई का वो पल, वो आंसू और वो खामोशियाँ शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, पर जब ये एहसास को इसको शुरू में पिरोया जाता है तो हर आंख नम हो जाती है।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
2: तो श्रोताओं, आपके पसंदीदा गीत आप सुन रहे हैं सुरमई सांझ कार्यक्रम में अपने पसंदीदा रेडियो पर। और दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा उस दौर में छूटा रहता है जहां ना कल की चिंता थी ना आज की फिक्र। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने बचपन की। वो तितलियों के पीछे भागना, कागज़ की कश्तियाँ बनाना और छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना। आज के इस सुहाने सफ़र में, यानी सुरमई सांझ कार्यक्रम में, हम आपको सुनवाते हैं साल 1959 में आई बिमल रॉय की फिल्म

बेहतरीन फिल्म थी सुजाता, जहां मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हसीन अल्फाज और सचिन देव वर्मन यानी एसडी वर्मन साहब का जादुई संगीत सीधा दिल को छूता है। और जब इस धुन को अपनी आवाज़ से सजाया हो आशा भोसले और गीता दत्त ने, तो समा बंधना लाजमी है।

सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम है सुरमई सांझ। कैफी आजमी द्वारा लिखा ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज और फिल्म है बहारें फिर भी आएंगी। लीजिए सुनिए।

जी हाँ बिल्कुल श्रोताओ, अक्सर हम लोग हालातों का रोना रोते रहते हैं कि मौसम खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही या फिर लोग बदल गए हैं। लेकिन दोस्तों, पतझड़ के बाद ही तो बहार का असली मज़ा आता है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आग भड़काएं, लेकिन जो अपनी धुन के पक्के होते हैं वो कांटों में भी फूल खिला ही लेते हैं।

तो श्रोताओं, लम्हों का क्या है, ये तो गुजर ही जाते हैं, पर कुछ गीत और कुछ यादें हमेशा के लिए दिल में ठहर जाते हैं। सदाबहार नगमों का ये खूबसूरत सफर आज के लिए बस यहीं तक। उम्मीद है कि इन पुरानी यादों ने आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर बिखेरी होगी। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि यादें संजोते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो इस गीत के साथ ही नर्मदा को अनुमति दीजिए।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
2: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
3: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: जी सेक्टरी जी, तो देखा अपने किसान भाइयों का प्यार दिया, लोक गीत भी सुनाई था, कने स्नेह भी सुनाई थे, कने उसके बाद फ्री ते कमे दिया गल जड़ी से अपने किसान भाइयों ने हाँ करनी है।
5: जी बिल्कुल
4: जी, किसान भाइयों तो हूँ जी हाँ तुमने गल साझा करनी है, सह थनैला रोग के बारे में, क्योंकि ये रोग भी यहाँ के पशुओं जो खास कर आते हैं दुध वाले पशुओं जो काफ़ी नुकसान जरा सह करता है। तो किसान भाइयों थनैला रोग जड़ा सा पशुओं च खासकर ये जड़ा रोग है सहां दी गाइयां कईयां गाइयां कने मेहियां जोंदा है, कने हिमाचल च थनैला रोग जड़ा है इस जो थन सूजना भी बोलदे हन।
5: जी बिल्कुल,
4: हां दी देसी भाषा च थन सूजना रोग भी बोलिया जांदा है।
5: जी बिल्कुल।
4: तो किसान भाइयों ये रोग जड़ा सा बैक्टीरिया दे कारण फैलदा है, कने ये बैक्टीरिया थणा दे अंदर चली जांदा, कने थण गर्म हो जांदे, लाल हो जांदे, कठोर हो जांदे, कने थणा च गांठा देणी है बणी रोग खास कर जल आसा दा पशु गंदगी च बहंदा या गोबर च बहंदा या फिर थाना दे थाना ते घट दूध जड़ा सा कई बार होंदा ना कि आंदे किसान भाई थाना ते घट दूध कढ़ दे, कई बार गलतियां ने रही आंदा या फिर कई बार तिना अपने छोटे बछड़े बछड़ियां छड्डे होंदा तां वी गलतियां ने रही आंदा, तो तिसदी भजन है भी जड़ा सा आस्ते आस्ते थनैला रोग जड़ा सा आंदे पशुओं जो होई आंदा।
5: बिल्कुल ठीक राज दिखा जी, इस रोग ते बचने दा सब ते वधिया जड़ा उपाय ऐसा यह है कि पशु दी जिहड़ी साफ सफाई है ना समय अनुसार करदे रहना चाहीदा, कने अगर कुछ पशु जे थनैला रोग होई भी आए तां तुसीं संतुलित आहार हरा चारा सुखा चारा या कने पशु चिकित्सक की सलाह जी जरूर लेना चाहिए, कने कने अपना जो खनिज मिश्रण हाँ दें सभी दें रहना चाहिए, कने अगर पशु चारा नहीं खा दा है कने कमजोर दिखा दा है तो जरूर जरा है चिकित्सक करना जरा संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बीमारी के दौरान जरा है पशु जो आरामदायक साफ कने सुखी हवा भी चाहिए होंगी है, कने पशु जो गंदे कीचड़ वाले स्थान पर भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए।
4: हाँ जी, कने इसके बाद दिखा सैकटरी जी गल की जाए तो यह जो थनैला रोग है ये दो तरह का होंगे, एक तो रोग हों जिस तरह हाँ पता लगी आता कि दिखा हाँ गाय में जो थनैला रोग होया कई कि हाँ पशुओं के जड़े थण होंगे तो इस सूजन आ जाती, कने एक थनैला रोग हों तो पता ही नहीं चलता, 20-30% तक जलू दुध कटी आता तलू तो हाँ थोड़ा थोड़ा पता लगना लगता कि हाँ पशुओं के थाना च कोई परेशानी है कोई बीमारी तो नहीं लगी, तो इस करके हाँ जे किसान खास कर दुधारू पशु इन्हों का खास ध्यान रखना चाहिए कि इन्हों जो थनैला रोग तो नहीं होया, कने अगर हाँ पशु एकदम खाना घट करी दे या फिर तिसते थणा च कोई सूजन वगैरह आ जाती है या फिर थणा ते खून आना शुरू हो जाता है या फिर जो हाँ पशु है सह सुस्त हो जाता तो हाँ किसान भाइयों समझी लेना चाहिए कि हाँ पशुओं जो कोई बीमारी जेडे से हो दी।
5: जी बिल्कुल, दिखा जी अगर तुम डेयरी पालन का काम करा करते हैं तो हाँ कुछ चीज़ और भी जो देखना चाहिए कि हाँ पशु पशुओं के जो थन कने दूध जरा भी जांच कराई लेना चाहिए ताकि हाँ जो तभी पता लगी आता कि यह रोग अहां दे पशु होया या नहीं होया, कने सब तो बड़ी गल है कि जो हाँ बीमार पशु हों तो अहें बाकी स्वस्थ पशुओं से भी अलग रखना चाहिए।
4: जी जी
5: ठीक है, कने बीमार पशु का दूध अलग रखना चाहिए, कने बिना सलाह से कोई भी उपचार जो है नहीं करना चाहिए, कहे कि जो उपचार अहां दे चिकित्सक कर सकते ना इस रोगे अहां ते नहीं कर सकते।
4: जी जी हाँ जी, कने दिखा सैकटरी जी गल तो हाँ यही बोलना चाहते कि थनैला रोग एक ऐसा रोग है जोड़ा कि अहम कई बार क्या होंगे कि पशुओं के थाना जो भी खराब करी जिसकी वजह ने सह उम्र भर जैसे तिसते थाना च नुक्स रही आता, तो इस करके ध्यान जोड़ा सा जरूर रखना चाहिए कि जल भी तो लगता है कि थनैला रोग अहम पशुओं हो ही है तो एकदम जोड़ा सा डॉक्टर की सलाह जी से लैना चाहिए। कने इसके बाद दिखा सैकटरी जी दिन भर आते किसान भाई खेतों कम करते कने थकी भी रहे होंगे, कने अज दिखा मौसम भी साफ था मुझे लगा था अज आते किसान भाई जैसे पूरा ओडा गड्डी लिया आना ना
5: जी, बिल्कुल,
4: ता
5: बिल्कुल,
4: इस करके तिना की थकावट दूर करना हाँ फर्ज बनता है, तो सुनाना तिना जो एक प्यार दिया लोक गीत कने उसके बाद संदेश।
5: जी बिल्कुल।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Sporty look, standard 6 airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. Ye hai epic new Maruti Suzuki Swift Petrol. Ab paye powerful Z series engine ke saath, jo har drive ko banaye mazedar aur economical. Aur ab milega total benefit up to ₹35,000. Style, safety aur savings sab ek hi package mein. To der kis baat ki? Apne nazdeeki Maruti Suzuki Arena showroom par aaj hi visit kijiye aur Swift Petrol ghar laaye. Jaldi kijiye kyunki kimaton mein ₹20,000 tak ki badhotri jald hone wali hai. TNC apply.
2: जी किसान भाइयों, तो इस ते बाद फ्री दे थोड़ी देर तुहने कम्मे दी गल करनी है, कने फ्री बाद दे चाहा तुहां जो एक प्यारा दिया लोक गीत सुनाना है।
3: जी बिल्कुल,
2: तो गल करनी है दिखा सैकटर जी हुणां दे किसान भाइयों फ्री दे सब्जियां वगैरह लगाने दी तैयारी जिहड़े सह करा दे, तो गल करनी है दे बी दे बारे च। क्योंकि बी अगर आंदे किसान भाई अच्छी किस्म दा लगान तो तिन्हां दी फसल जिहड़ी सह अच्छी हुंदी है, कने जिहड़ी फसल है तिस जो बीमारियां भी घट लगदियां। तो इस करके कृषि विशेषज्ञ भी यही बोलते हैं कि आंदे किसान भाइयों जो अच्छी किस्म दा बी जिहड़ा सह खेतां च लाना चाहिए, कने बी जिहड़ा सह तिस जो उपचारित जरूर कर लाना चाहिए, चाहे सह बी आं कोई फसल लगा दें तिस वास्ते लगा दे या सब्जियां वास्ते लगा दे या फिर फल पौधे वास्ते लगा दे।
3: बिल्कुल,
2: तो बीज जड़ा है अच्छी किस्म का होना चाहिए, कने उपचारित बीज होना चाहिए, कने कृषि विशेषज्ञ दी दिखा सैकटरी जी हाँ देख सन हुई जरूर सलाह लेना चाहिए अगर कोई फसल लगा दे या फिर बागवानी करा दे, क्योंकि जगह जलवायु के हिसाब से जड़ी सह फसल अलग अलग होंगे।
3: जी बिल्कुल, तो ठीक लाया दिखा जी, अहां दे हिमाचल में निचले मध्यम कने ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में जो तापमान है सब भी अलग अलग होंगे।
2: जी जी,
3: तो सर्दियों में कुछ जगह मौसम जो हल्का होंगे, जबकि उपरले क्षेत्र हाँ या तो पहाड़ा कने बर्फबारी का खतरा भी जरा ज्यादा होंगे। इस वास्ते अहां दी हर एक फसल हर एक क्षेत्र च अलग अलग समय पर नहीं लगाई जा सकती, बल्कि एक समय पर नहीं लगाई जा सकती। फसल लगाने से पहले स्थानीय कृषि विभाग ने गल करना बड़ा जरूरी है, कने कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञ के अनुसार भी सलाह लेना जो बड़ा जरूरी हो जाता।
2: हाँ जी, कने देखा अजकल तहां दे कृषि विशेषज्ञ घरे द्वारे भी आया दे, अगर अहां दे किसान भाइयों जो अगर लगता है कि अहां जो अपने खेतों च कृषि विशेषज्ञ जो सदना चाहिए, तो सह घरे भी आ जाते, कने खेतों च भी आ जाते, कने इन्हों सलाह भी देते, कने इस सोगी ये भी दसी दे कि तुहानी फसल जो अगर कोई बीमारी लगी है तो कुण की बीमारी लगी है, कने तुहां किस तरह का उपचार जरा करना है।
3: जी बिल्कुल, दिखा अहां दे किसान साथी हैं हमेशा अपने इन्हों कृषि विशेषज्ञ कने जुड़ी के रहना चाहिए, ताकि अहां दी फसल जी सही तरीके ने होए, कने अहां कोई नुकसान ना होए।
2: हाँ जी, कने इस दे सोगी दिखा जियां कि अहां मिश्रित खेती दे बारे च भी गल करदे हन, तहां दे किसान भाइयों जो जड़ा सा मिश्रित खेती भी जरूर अपनाना चाहिए, कने इह सलाह भी विशेषज्ञ दिंदे हन कि अहां दे किसान भाई अगर मिश्रित खेती अपने खेतों च लगाते हैं फसल जी से अदला बदला करके लगाते हैं, तो इसने खेतों की जी मिट्टी है इसकी भी उर्वरा शक्ति बढ़ती, पोषक तत्व बढ़ते, कने बीमारियां भी घट लगदियां।
3: जी बिल्कुल ठीक लगा दिखा जी, अगर गल की जाए अहां दे हिमाचल में निचले कने उपरले क्षेत्रों च लगाने वाली सब्जियां दी, तो पत्ता गोभी, फुल गोभी, ब्रोकली, गाजर, मूली, सलजम, पालक, मेथी, धनिया, मटर, लहसुन, प्याज, कने आलू, कने सलाद पत्ते वाला जिहड़ा हुंदा।
2: हाँ जी,
3: यह फसलां जिहड़ियां सर्दियां च सब्जियां दीआं अहां दे हिमाचल में लगाईआं जांदीआं, कने कुछ फसलां तो ऐसियां भी हैं जिन्हां अहां पोली हाउस में भी लगाना पौंदा इन्हां विचों ते।
2: जी जी, कने इस ते सोगी दिक्कत सैकटरी जी कृषि विशेषज्ञ तो यह भी बोलते हैं कि हाँ देख सन हुए जो जड़ा सा गहरी जड़ वाली फसल लगाना चाहिए, फिर घट जड़ वाली फसल भी जड़ियाँ से जरूर लगाना चाहिए, अदला बदला करके अगर अहां देख सन वाली फसल लगाते हैं मिश्रित खेती करते हैं, तो इन्हों जो काफ़ी फायदा जड़ा सा मिलता है।
3: बिल्कुल जी, तो ठीक लगा दिखा अहां दे हिमाचल के अनुसार जलवायु के अनुसार यहाँ विशेषज्ञ ने गल करी कि जी फसल से लगाना चाहिए, ताकि अहां की फसल कोई नुकसान ना हो, कने अहां भरपूर पैदावार जी से मिले।
2: हाँ जी, कने अहां तो अपने किसान भाइयों बार बार टियाले के माध्यम ने बोलते रहते कि बी खासकर बी जड़ा सा अच्छी किस्म का होना चाहिए, कने फसलों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगेती पछेती किस्म लगाना चाह अगर अगेती फसल लगा दें तो फसल बी भी जड़ा सा अगेती होना चाहिए, कने अगर पछेती फसल बहा दें तो बी जड़ा सा भी पछेती ही होना चाहिए।
3: जी बिल्कुल, हाँ ठीक लाया दिखा किसान साथी, अहें सबसे बड़ी जी जरूरी गल एक और ध्यान रखने वाली कि अहां चाहे अगेती फसल का बीज लगान चाहे पछेती लगान, पर अहें बीजोपचार जरा जरूर कर लेना चाहिए।
2: जी जी,
3: ताकि अहां की जो बीज सारे अंकुरित हो जाए, कने अहें फसल भी भरपूर मिले।
2: हाँ जी, कने अहां दे किसान भाई जालू भी बीज उपचारित करके लगाते हैं, तो इसने अहां दी जड़ी फसल है अच्छी होंगी, कने फसल जो बीमारियां जड़ी सह घट लगदी, कने परिवार भी जड़ी इस किसान भाइयों की अच्छी होंगी।
3: जी बिल्कुल,
2: कने इस दे बाद दिखा सैकटरी जी फ्री ते किसान भाइयों का मनोरंजन करवाना है, कने सुनाना तेना जो एक प्यारे दिया लोक गीत
3: जी।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: इसके बाद किसान वायु मोर्चा ग्राई दियां कार्यक्रम जड़े से हुण इत्थों मुकदा जाने ते पहले दसीए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार, कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह कने हुण मिंजो यानी चंचलो कने
2: सेक्रेटरी दिया इजाजत।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं, आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपये और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपये की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijaya Dashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5

0: प्यारे प्यारे किसान भाइयों का एक बारी फिरी ते ट्याले पर स्वागत है। कने किसान भाइयों कार्यक्रम मैं खेतीबाड़ी ता सैकटरी जी तुहां दा भी एक बारी फिरी ते ट्याले पर स्वागत है। कने फिरी ते अपने किसान भाइयों दा मनोरंजन करने वास्ते तैयार हन। कने सोगी सोगी जानकारियां भी सांझा करनियां
1: जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, राम राम किसान साथी, वहां फिरी ते ट्याले पर हाजिर हैं तुहां सामने
0: जी।
1: कने ले क्या है जानकारियां, कने गल करनी है खेतीबाड़ी दी
0: जी। जी
1: दिखा दी है कि सारे किसान साथी पता कि सारे लोगों भी पता है कि यहां दे जेड़े किसान नान साहब बड़ा ही काम करते, कने कोई ना कोई आय का जो नवा नवा जो स्रोत है तोपते रहेंगे। हाँ, तो किसान खेतीबाड़ी कने मतलब और कोई आय बढ़ाना चाहते, अपनी आय ज़्यादा करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम करने हाँ जो करते रहना चाहिए। कने इन छोटे मोटे कामों के बारे में अज हाँ जी गल करनी है तो सह खुम उत्पादन की गल
0: जी। जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलिया सैकटरी जी। जियाँ कि हाँ शुरुआत से बोलिया कि हाँ देख किसान भाई हाँ जो खेतीबाड़ी के सोगी सोगी होर भी छोटे मोटे व्यवसाय जोड़े सह करते रहना चाहिए। तो व्यवसाय की गल की जाए तो हाँ देख किसान भाई वैसे तो करा दे भी हैं, पर कुछ एक हाँ देख किसान भाई जोड़े हाल सोचा देन तो तिना के बारे तिना जो हाँ जरूर दसना कि हाँ देख किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ा सह लघु व्यवसाय अपनाई सकते। कने लघु व्यवसाय जियाँ कि मछली पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, हाँ देख किसान भाई केंचुआ खाद बनाए के भी अजकल बेचा दे भी हैं, कने अपने खेतों च भी पा देन। मधुमक्खी पालन हो गया, कने इसके सोगी जियाँ कि तुम गल की खुंब उत्पादन
1: जी। बिल्कुल हाँ ठीक लाया दिखा जी। खुंब उत्पादन एक ऐसी खेती है जिहा वहाँ घट जगह विच नियंत्रित वातावरण दे अपनाई करी अच्छी आमदनी जी इसे कमाई सकते हैं। तो हाँ छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं, कहने तो हाँ अगर जगह ज्यादा तो हाँ ज्यादा स्तर पर लंबे बड़े स्तर पर भी इसे तो हाँ कर सकते हैं।
0: हाँ जी, पर सैकटरी जी अपने किसान भाई हैं जो हाँ पहले एक गल जरूर दसना चाहेंगे कि अगर हाँ देख किसान भाई खुंब उत्पादन मशरूम पालन उत्पादन के बारे च सोचा देन तो तिना जो शुरुआत जी इस है थोड़े पर ही करना चाहिए
1: जी। बिल्कुल जिना जिना जी शुरुआत करनी है तिन्हें तो मतलब 2-4-5 बैगा से या 10 बैगा से शुरू करना चाहिए।
0: हाँ जी
1: पहले तो करा देने तक तिना है तो फिर यहाँ क्या बोली
0: अपने व्यवसाय जो बधाई सकते
1: सब बधाई सकते जी। बिल्कुल दिखा खुंब उत्पादन करने सब तो वड्डी गल है कि तुहां कुण दे किस्म दा जिहड़ा चयन करते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले जिहड़े स्पोन यानी कि बीज जिस वहाँ गलांदे ने सह तुहानूं पता होना चाहिए कि कियां होंदे ने कि कदे लगदे कदे होंदे ने मतलब कि कने उत्पादन वास्ते अहां कमरे या शैड की तैयारी जिहड़ी सभी करना चाहिए, भूसे कने अन्य समगरी जिहड़ी सभी हां जो तैयार रखना चाहिए, स्पोन मिलाने की जिहड़ी विधि है हां जिहड़ा बीज अहां इन चीज़ां कने मिलाना तो सभी एक तरीके ने मिलाना पौंदा ताकि अहां दा जिहड़ा उत्पादन है अच्छे तरीके ने होए। कने जिस कमरे च अहां या जिस भी शैड च तुहां उत्पादन करने दे वास्ते इस्तेमाल करा दें तां इस कमरे च जिहड़ा असां नमी दा जिहड़ा प्रबंध है सभी अहां करी के रखना चाहिए। उत्पादन दे दौरान जिहड़ी इस व्यवसाय च स्वच्छता जिहड़ी बड़ी जरूरी है क्योंकि अगर तुहां इस व्यवसाय च स्वच्छता नहीं रखगे तां तुहां दी सारी फसल जिहड़ी खराब हो सकदी
0: जी। जी
1: रोग कने कीटां दी पहचान भी अहां इस विच रखना चाहिए, कने खुंब दी तुड़ाई भी समय पर करी लेना चाहिए। बाकी गल रही हम पैक करी के बाजार बेचने की तो शायद अजकल समगरी जी बाजार आम मिली आ रही है, कहने बाजार बेचने दी नेड़े की जी भी सब्जी मंडी तुम जाके तो बेची सकते या तो होटलों या रेस्टोरेंटा कने भी तो संपर्क करी सकते हैं।
0: हाँ जी दिखा सैकटरी जी, खुंब उत्पादन तो एक ऐसा उत्पादन है भी लोगों को पता लगना चाहिए कि इतु जो खुंब उत्पादन किया जाता है ना तो लोग अपने तुहां दे घर द्वारे पुज आते कि भी अहां जो अहां जो ये कि अहां दे जेड़े किसान भाई इस समय जेड़े से खुंब उत्पादन का व्यवसाय कर रहे हैं तो सुनने मिलता कि भी हाँ जो घट पे आंदा भी ना लोग मांग ज्यादा रखते कने हाँ बल जड़ा से
1: बिल्कुल फसल
0: सामग्री घटी
1: आंदी। बिल्कुल जी तुम ठीक रहा दिखा जी, सब तो बड़ी गल है कि अहां पता होना चाहिए कि अहां बाजार में कौन दी जी किस्म है ज्यादा बिकती है तो अहां बाजार में इस वक्त जी बटन खुम जी सब तो ज्यादा बिकती है, परंतु इस किस्म के अलावा और भी बड़ी किस्म जड़ियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां कोई दवाइयों वास्ते या कोई और कुछ साधन वास्ते खरीदियां
0: जी। जी
1: तो उसके बाद दूए नंबर पर ओयस्टर खुम जी इहदी भी मांग जी बड़ी ज्यादा होंदी है अच्छिया अच्छी कीमत जी इसकी बाजार में मिली जाती है।
0: हाँ जी कने इसके बाद दिखा सैकटरी जी अहां तो अपने किसान भाइयों यही बोलते हैं कि अगर अहां दे किसान भाई जेड़े शुरुआती तौर कर पर सोचा देन कि हाँ खुंब उत्पादन का व्यवसाय करना है तो सह जेड़ा सह कृषि विशेषज्ञ ते सलाह मशवरा करी लैन तिना ते सलाह ले लैन। कने अगर तिना जो थोड़ा कठिन लगता शुरुआती तौर पर तो जेड़ा सह खुंब उत्पादन का व्यवसाय करने वास्ते बैग भी मिली आते ना बने बनाए बैग मिली आते तिना सैड बनाए के जेड़े सह रखी सकते
1: बने बैग लैने तो इस वास्ते तो जो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ने या कृषि विज्ञान केंद्र कने संपर्क करना पौना कने इस वास्ते तो जो पहले दिते ने दसना पौना कि अहें कितने बैग चाहिए ताकि तो जो समय पर से मिली जान क्योंकि अगर हाँ तीन पहले तो अपना ऑर्डर नहीं दिते होंगे तो सू से बैग नहीं मिलते होंगे तो यह चीज़ा कुछ दिखने वाली जो तो बीज आपू लगाना है तो तुम आपू लगाई सकते कहना जब तुम बैग लैने बने बनाए तो पहले तो जरा विज्ञान कृषि विभाग जो जरा दसना पौना
0: जी तो दिखा सैकटरी जी हूँ ज्ञान तो बड़ा हो गया जानकारी बड़ी हुई किसान भाइयों का मनोरंजन करते हैं कने सुनाने सुनाते हैं तेनाली प्यार दिया लोग
1: जी बिल्कुल।

0: किसान साथियों हाँ सुने बड़ा प्यारा जहाँ लोकगीत कने हूँ टे पर फिर तो वक्त है जानकारी का कने जानकारी जी अज ले के आए गलबात है मधुमक्खी पालन के उपर तो वह सुनते हैं गलबात
1: जी।
2: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी जिया कि तुम जानते हैं कि अहां का प्रयास रहा हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए चाहे वह कृषि विज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी हो या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने की गई गलबात हो उसी कड़ी विच आज

0: चाहता एक काम कराई कर देन, लेकिन जल्लू हाँ दिया किसान भैणा भी बड़ी चढ़ी जी है तुहान देखा भी मधुमक्खी पालन का काम तुहान करा कर देन कन अपने इलाके विच जड़े से तुहान एक प्रेरणा का जड़े से स्रोत है और ना महिला ताइया भी आहां ते जड़े बेरोजगार युवा है जड़े आहां दी नई पीढ़ी है तिने तुहान क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो यही संदेश है कि अपना काम तो अपना काम है, क्योंकि बाहर आजकल नौकरियां कुछ भी है नहीं ना, जो अपनी खेती बाड़ी करा जो अपना कोई भी काम करा से जरूर करना चाहिए, बेले बैठे के तो कुछ भी नहीं मिलना जिन्हें इतना हम काम करके अपने घर वास्ते उतना।
0: पूजा जी अपने मधुमक्खी पालन का जरा काम कार है तुहान का ये अनुभव तुहान अहां कन्ने साझा किए तुहान अहां कन्ने जुड़े अपना कीमती समय तुहान अहां जो दिता तुहान का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों अहां सुनी मधुमक्खी पालन की जानकारी कने जानकारी के बाद वक्त है सब्जी मंडी के थोक भाव का। तो अज आलू रहा 12-22 रुपये किलो, प्याज 52-55 रुपये किलो, टमाटर 25-28 रुपये किलो, लहसुन 200-230 रुपये किलो, अदरक 100-130, शिमला मिर्च 65-70 रुपये, अरबी 28-30 रुपये, खीरा 40-45 रुपये, मटर 150-160 रुपये, फूल गोभी 55-60, बंद गोभी 22-28 रुपये, बैंगन 22-25 रुपये, कद्दू 15-25 रुपये, मूली 30-40 रुपये, पालक 55-60 रुपये, हरी मिर्च 56-50 रुपये, धनिया 150-200 रुपये, भिंडी 25-30 रुपये, घीया 15-30 रुपये, करेला 25-30 रुपये, फ्रासबीन 50-60 रुपये, गाजर 30-35 रुपये, मशरूम रही 190-200 रुपये।
3: जी इस दे बाद गल कीती जाए फलां दी तां अज कांगड़ा सब्जी मंडी च सेब रहा 60-110 रुपये प्रति किलो, केला रहा प्रति दर्जन 40-50, अनार रहा 50-120 रुपये प्रति किलो, अनानास 40-45, अमरूद रहा 100-120 रुपये प्रति किलो, मौसमी रही 40-50, पपीता भी अज कांगड़ा सब्जी मंडी च 40-50 रुपये प्रति किलो बिकया, कने संतरा रहा अज 100-120, नींबू रहा अज 170-180 रुपये प्रति किलो। कने सैकटरी जी इसके बाद गल की जाए मौसम की, तो अज मौसम के बारे अगर धर्मशाला की गल कर अज धर्मशाला का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम 21 डिग्री सैलसीयस, चंबा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम रहा 20 डिग्री सैलसीयस, बिलासपुर की गल की जाए तो बिलासपुर का अज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम जोड़ा सा 24 डिग्री सैलसीयस रहा, ऊना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सैलसीयस, कने न्यूनतम जोड़ा सा 23 डिग्री सैलसीयस रहा। कने आने वाले 4-5 दिन तक जड़ा सा हुण आस्ता आस्ता मौसम जड़ा सा साफ होने दी संभावना है।
2: जी बिल्कुल।
3: कने इसके बाद सैकटरी जी फ्री ते चलदे चलदे सुनांदे अपने किसान भाइयों जो एक प्यारा दिया लोक गीत।

0: जी ते किसान भाइयों तो सुने प्यारे दया लोक गीत कन्या उम्मीद है कि तुहां जो लोक गीत पसंद आया होना कन्या दिन भर दी जेड़ी भी थकावट है ना सेक्रेटरी जी
1: जी
0: सहां दे किसान भाइयों दी थोड़ी दी तो जरूर कटी होनी है ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कने इस ते बाद दिखा हुण जहां दा जड़ा सा जाने दा समय भी हुई है ता जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया सुनील कुमार कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह कने हुण मिंजो यानी चंचलो कने
1: कने सेक्रेटरी दिया इजाजत।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: जी
1: जी जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30 और क्लास 1 व 2 के लिए की 15% डीए के भुगतान की घोषणा, अधिसूचना जारी। कांग्रेस ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश के संसाधनों को बेचने का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा, किशाऊ बांध परियोजना का श्रेय लेने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं को मिल रही गति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30% और क्लास 1 व 2 के लिए 15% डीए की अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। आज शिमला में पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू

0: कहा कि हिमाचल आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और सरकार अपने वित्तीय अनुशासन के कारण डीए देने में सक्षम हो रही है।
1: मैंने ये फैसला किया है क्लास थ्री के जो पेंशनर हैं 1/16 के बाद 31/1/2022 तक के उनको 30% एरियर और क्लास वन क्लास टू के 15% की एरियर की नोटिफिकेशन आज ही कर दी जाएगी। प्रदेश अपनी वित्तीय स्थिति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, मुश्किल दौर गुजर चुका है, अब धीरे धीरे हम अच्छे दौर की ओर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग इसमें साथ दें, सहयोग करें, धीरे धीरे सबकी पेंशन एरियर डीए सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कोई मेडिकल रिवर्समेंट में कोई पैसे की कमी नहीं है। ये ठीक है कि आरडीजी कटने के बाद कम्यूटेशन लीव इनकैशमेंट और एरियर में जो थोड़ा कमी आई है।
0: इस बीच मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग की ओर से डीए संबंधी अधिसूचना आज शाम जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर किशाऊ बांध परियोजना के समझौते के जरिए हिमाचल के संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और बिना किसी शर्त के एमओयू साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड की तर्ज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे हिमाचल को करोड़ों का नुकसान होता।
2: जयराम ठाकुर जी ने जो समझौता किया उस समझौते को मानने से जब हमारी सरकार आई हमने मना कर दिया, और ये समझौता चार बैठके तो मेरे साथ होगी, आपको 12% बिजली फ्री रॉयल्टी देंगे, हमने कहा ये भी नहीं हम मानते। और अमित शाह जी के पास तो मैं सामने था ना, मैंने वो अपनी बात अड़िग से रखी, हिमाचल के साथ जो समझौता किया और हिमाचल के तकरीबन ये जो 412 मेगावाट है इसमें 6-7 हजार करोड़ रुपया बिजली बनाने का आएगा, और बिजली बनाने के बाद इससे जो 1200 करोड़ रुपया बिजली का हमको पैसा मिलना शुरू होता तो 600 करोड़, लेकिन ये 5 साल बाद बनकर तैयार होगी तो 1200 से 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा। जयराम जी है चाहे और कोई राम जी है, सब झूठ बोल रहे हैं।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में महिला व बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी योजनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत विधवाओं के 27 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रतिमाह 1000 रुपये पॉकेट मनी प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पर तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने और परियोजना का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से संभव हुआ है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार इस परियोजना की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन परियोजना के वास्तविक वित्तीय प्रावधान और केंद्र सरकार के योगदान को सामने नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15,624 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जल घटक की 12,096 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था है, जो इसे आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। राजीव बिंदल ने किशाऊ बांध परियोजना समझौते की सभी वित्तीय और कानूनी शर्तों को भी सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है।
3: इस परियोजना की कुल लागत वो 15,624 करोड़ रुपया है, उसमें जो जल का घटक है उसका अमाउंट है 12,096 करोड़। 12,096 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार बियर कर रही है। अब स्कीम का सबसे बड़ा कंपोनेंट वो केंद्र की सरकार बियर कर रही है। मेरा सीधा सीधा और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप है कि वो वास्तु स्थितियों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
5: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
6: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
5: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में

0: आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राज्य सचिवालय में इलर्जली भवन चरण दो का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कार्यालय भवन से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री का जो कार्यालय पुराना था, वहाँ कई बार डेपुटेशन आते थे तो वो वहाँ खड़े रहते थे, इतनी चेयर्स लगाने की भी जगह नहीं थी। इस कार्यालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कार्यालय भी है और विधायकों को बैठने के लिए और आम जनता को मिलने वाले लोग हैं उनका भी कार्यालय है। इसी बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जब कोई मंत्री आता था या मुख्यमंत्री जी आते थे तो जो संजौली से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था, जो छोटा शिमला से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था और बहुत अव्यवस्था हो जाती। इसके बनने से काफी खुली जगह हो जाएगी।
0: विपक्ष के फिजूल खर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यालय किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद का है। उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो इसी कार्यालय में बैठेगा, ऐसे में भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रेलवे और रोडवेज से विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को इस नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने देश की कार्य संस्कृति में बदलाव और एकीकृत विकास पर जोर दिया था।
2: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गतिशक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गतिशक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा।
0: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पीएम गतिशक्ति के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी देकर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में इस योजना के तहत पालमपुर में आईटी पार्क, बद्दी में नया औद्योगिक क्षेत्र और हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में खाद्य आपूर्ति के लिए रखरखाव व स्टोरेज क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए नए गोदामों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में फोरलेन हाईवे परियोजनाओं के अलावा अन्य सड़क मार्गों के निर्माण व रखरखाव को भी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गति दी जा रही है। लाहौल स्पीति जिले में मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिसु में सेल्फी प्वाइंट के पास एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे जो मंडी जिले के रहने वाले थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30 और क्लास 1 व 2 के लिए की 15% डीए के भुगतान की घोषणा, अधिसूचना जारी। कांग्रेस ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश के संसाधनों को बेचने का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा किशाऊ बांध परियोजना का श्रेय लेने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं को मिल रही गति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
4: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: देशगान अभी
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए हरभजन मान की आवाज में ये पंजाबी गीत।

जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9 रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: Meet India's scale and growing demand.
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति

0: कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और इसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
7: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
6: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities.
7: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
6: The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra. A report.
8: This procurement is a significant step towards indigenization of critical subsystems of armored platforms and demonstrates industry-led research and development make too. The induction of indigenously developed APUs will further strengthen the operational readiness, reliability and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. The contract is aligned with government's vision of Viksit Bharat at 2047 and marks a notable milestone towards achieving Atmanirbharta in defense and building a resilient, self-reliant and globally competitive Indian defense industry. With Arzu, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
6: The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines will apply to all upcoming 4- and 6-lane greenfield and brownfield high-speed access-controlled national highways. The guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highway corridors. This is Akashvani giving you the news.
9: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
6: President Draupadi Murmu has arrived on a 3-day visit to Gujarat today. The president will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. Marking a historic shift, the Ministry of Information and Broadcasting takes the nation's highest film honours beyond the capital to celebrate India's cinematic diversity under the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. A report.
10: President Draupadi Murmu will preside over the ceremony at Ekta Nagar. Senior officials, including Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Chanchal Kumar, have reached Ekta Nagar to oversee and witness the historic event. Following the award ceremony, President Draupadi Murmu will travel to Vadodara for her final engagements on Wednesday. She'll attend the 75th annual convocation of the Maharaja Sayajirao University of Baroda as a chief guest to present gold medals to the meritorious students. Later in the afternoon, the president will launch Brahma Kumari's initiative Spiritual Awakening for World Renewal and inaugurate the Global Spiritual Palace at Padra alongside the virtual national launch of Youth for Viksit Bharat. Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad.
6: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the digital public infrastructure.
2: Digital public infrastructure is reshaping how nations govern, transact and deliver services. In this transformation, India has moved from being a large user of digital systems to a builder of population-scale digital architecture. India has built three layers of shared digital infrastructure and left each of them open for others to build on. First is Aadhaar, which provides a verifiable identity. UPI moves money between any two bank accounts instantly at no charge to the person paying. The account aggregator framework lets a citizen share their own financial record with a lender or insurer with consent. Addressing the global FinTech Fest 2026 this month in Mumbai, Prime Minister Narendra Modi highlighted UPI's remarkable 10-year journey and its growing global reach.
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शंस हुए हैं, और साथियों, भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, शरण्यम सिंह, अ रेजिडेंट ऑफ पटना, सेड ही यूज्ड टू चेक इफ ही हैड एनफ कैश इन हिज वॉलेट बिफोर स्टेपिंग आउट, बट नाउ ही इजीली पेज फॉर टी, ग्रोसरीज और मील्स इन सेकंड यूजिंग यूपीआई।
11: There was a time when stepping out meant checking whether I had enough cash in my wallet. Today, that routine has completely changed. I can pay for a cup of tea, an auto ride, groceries, or a meal within seconds. I can split a bill with a friend or send money to someone instantly without carrying cash or looking for an ATM. What is remarkable is how normal this now feels. Digital payment has become part of daily life. And for me, this is the real impact of UPI.
2: India's journey with digital public infrastructure reflects a broader shift in how development and governance are conceived in the digital age. What began as an effort to expand financial inclusion and identity access has matured into a comprehensive, interoperable architecture that underpins economic activity, public service delivery, and institutional capacity. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: You are listening to News at 9 on Akashvani.
9: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
6: Vladimir Putin's United Russia Party has retained majority in the parliament after the elections, which were held from Friday to Sunday. Russian Central Election Commission said the ruling party has won 57.83% of the votes in the election for the 9th State Duma, the lower house of parliament. The results will help President Vladimir Putin maintain his tight grip on power. Addressing a press conference in Moscow today, Russian Central Election Commission chairperson said after 95.18% of the ballots counted, United Russia leads, followed by the Communist Party of the Russian Federation and the Liberal Democratic Party of Russia. The State Duma is Russia's permanent legislative body composed of 450 deputies. Half of the seats are distributed proportionally in accordance with party lists, while the remaining 225 are elected through single-mandate constituencies nationwide under a relative majority voting system. Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, younger brother of ruler of Dubai and UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, passed away today at the age of 76. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. In a social media post, Mr. Modi said that his efforts to serve the society will be cherished by generations to come. On to sports. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan today. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in the 10-meter air rifle team event.

विजय पाटिल था, वे एक बेहतरीन पियानो वादक और अकॉर्डियन वादक भी थे। उनका जन्म 16 सितंबर 1942 को नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता से और बाद में भातखंडे शिक्षा संस्थान से ली थी। तो आइए सुनवाते हैं आपको राम लक्ष्मण की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया ये गीत।

श्रोताओ, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार राम लक्ष्मण द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गीत। हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे राम लक्ष्मण। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्म में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं मैं किए गए अपने काम के लिए वे विशेष तौर पर जाने जाते हैं। संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक लक्ष्मण थे, जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। राम सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस प्रकार वह राम लक्ष्मण के नाम से भी जाने पहचाने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने मिलकर संगीत ये देते थे, लेकिन 1976 में फिल्म एजेंट बेनोद में गाना गाने के बाद अचानक संगीतकार राम का निधन हो गया था और इसके बाद संगीतकार लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल ने अपना पूरा नाम राम लक्ष्मण रख लिया था। उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था। राम लक्ष्मण ने करीब 150 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें हिंदी के अलावा मराठी और भोजपुरी भी शामिल हैं। मराठी फिल्म मेकर और अभिनेता दादा कोंडके ने उन्हें अपनी फिल्म पांडु हवलदार के लिए बतौर संगीतकार साइन किया था। इसके बाद सूरज बढ़ जात्या की फिल्मों में उन्होंने कई हिट गाने दिए। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी और भोजपुरी में 150 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था और मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली और सूरज बड़जात्या जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। राम लक्ष्मण के निधन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी शोक जताया। दिग्गज गायिका ने संगीतकार लक्ष्मण के निधन पर दुख जताते हुए ये भी कहा था कि मुझे पता चला कि ये बहुत गुणी और लोकप्रिय संगीतकार राम लक्ष्मण जी का स्वर्गवास हो गया है। तो आइए सुनवाते हैं आपको संगीतकार राम लक्ष्मण द्वारा संगीतबद्ध किया ये गीत।

तो श्रोता लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का एक ही संगीतकार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। तो कार्यक्रम का पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा की आवाज़ में।

गूंज पहाड़ों की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। धीरज शर्मा की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

महेंद्र राणा की आवाज़ में ये लोकगीत अभी आपने सुना। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी की आवाज़ में।

0: मान सिंह की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम पहाड़ गूंज पहाड़ों की यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 की दिल्ली हाइलाइट्स रिले की जाएंगी।
1: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपिक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए।

0: एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज़ फार एज़ शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कॉम्पिटिशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कॉम्पिटिशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वॉज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कॉम्पिटिशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्रांश पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
0: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
3: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead.

0: in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और दो मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या दो मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
0: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखें ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टेकराव। सेपेक टेकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टेकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टेकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टेकराव में जो टीम

0: में से दो मैच जीतती है वो मुकाबला जीतती है, और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले दो गेम अपने नाम किया उसने एक मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टेक्रा 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टेक्रा में अब तक दो कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4 11-4 11-5 एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6 11-7 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shreeja Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशू का, जहां तकनीक संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाओरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाओरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में दो मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
3: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action में थे इंडिया के लिए, और उनका ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले मैच में मंगोलिया को हराया कंफर्टेबली। दूसरे मैच में भी जीत मिली आध्या और जय को, उन्होंने हराया कंबोडिया को। मगर जो तीसरा मैच था वो कांटे की टक्कर थी साउथ कोरिया के खिलाफ। उस मैच में हार का सामना करना पड़ा हमारी इंडियन टीम को, मगर हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड

0: ऑफ 16 स्टेज में, एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना पांचवा मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
1: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
2: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: You just heard daily highlights of 20th edition.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है पसंद आपकी, गीत हमारे। तो इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और गीत सुनाएंगे हम उनको अपने पसंद के। तो फोन करने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01892224391 और देखते हैं कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
6: हेलो
5: जी, नमस्कार।
6: नमस्कार नर्मदा जी।
5: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
6: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव महतापुर से, महेंद्र सिंह राणा।
5: जी नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मुझे लगता है सबसे पहली कॉल आपकी आई है, बड़ी बेसब्री से आप इंतजार करते हैं फोन इन कार्यक्रमों का।
6: मैं सुन रहा था एशियन गेम की रिपोर्ट जो है वो सुन रहा था।
5: जी जी जी,
6: चलिए आज कौन कौन सी फिल्में रखी हैं आपने?
5: जी आप बताइए। हमने रखी हैं फरार, दोस्ती, रजिया सुल्तान, दो रास्ते।
6: तो ऐसा कीजिए, रजिया सुल्तान की गजल है जो वो सुना दीजिएगा।
5: जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया फोन करने के लिए।
6: ठीक है नर्मदा जी।
5: तो श्रोताओ, आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। और फोन करने के लिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं हमारा नंबर 01892224391 और सुनते हैं महेंद्र सिंह राणा जी की पसंद का ये गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हेलो हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। मध्य प्रदेश से जी, बहुत दूर से बोल रहे हैं। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएंगे।
2: खेतीबाड़ी करते हैं।
1: खेतीबाड़ी, तो आजकल क्या है फसल चल रही, क्या बीजा है आजकल?
2: अभी सोयाबीन और मक्का है।
1: मक्का है, ठीक। तो अब तो पक गई होगी ना?
2: पक गई है, अब तो कटाई हुई है 15 महीना बाद में।
1: अच्छा, ठीक। और उसके बाद क्या बीजेंगे मक्का काटने के बाद?
2: जी, मक्का के बाद में गेहूँ, चना, मसूर, राई, सरसों बोएंगे।
1: अच्छा, ठीक। तो आप इस टाइम तक रेडियो सुन रहे हैं ना?
2: हाँ जी, मोबाइल पे सुनते हैं।
1: मोबाइल पे सुनते हैं, ठीक।
2: जी, कभी कभी फोन कट जाता, फोन लगाते हैं तो।
1: अच्छा हाँ, कई बार होता है नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो हो जाता है ऐसा। जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: जी, श्रोता बहुत मेहनत से फोन लगाते हैं, फोन कट जाता तो बहुत दुखी की बात होती है।
1: जी, हमें भी अच्छा नहीं लगता जब मतलब बात पूरी ना हो और फोन कट जाए तो। हाँ, श्रोताओं को भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता, ये तो है।
2: श्रोता बहुत मेहनत से फोन लगाते हैं, बात नहीं हो जाती है तो।
1: जी, बिल्कुल जी। तो और कुछ कहना चाहते हैं, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
2: बस जो कार्यक्रम अच्छा लगता है, हर उधर सारा।
1: अच्छा, मतलब फोन इन जो भी कार्यक्रम होते हैं आपको सभी अच्छे लगते हैं या एक कार्यक्रम हेलो धर्मशाला ही अच्छा लगता है?
2: बस जो अच्छा लगता है फोन कार्यक्रम
1: उसमें। अच्छा,
2: जिसका श्रोता की बातचीत हो जाती है तो।
1: हाँ,
2: बातचीत हो जाती है, अपने पसंद के गाने सुनाते हैं उससे।
1: जी,
2: अच्छा लगता है।
1: जी। तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: मैम, कौन सी फिल्म है?
1: फिल्म है अभी हमारे पास फरार, दोस्ती, दो रास्ते। अभी तो इन्हीं में से बताइए आप। आशा फिल्म है, आरजू है, आराधना है, आंखें हैं।
2: आशा का सुनवा देना।
1: आशा का जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: कोई सा भी चला देना।
1: कोई सा भी जी। चलिए, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
0: डिंपल कुमार बोल रहा हूँ, सराह से मैम।
1: सराह से डिंपल कुमार?
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी। कैसे हैं डिंपल जी?
0: बढ़िया मैम, बढ़िया।
1: क्या कर रहे हैं आप?
0: बस क्या करना, मैं बोले आज प्रोग्राम में लेट हो गया आज वहाँ।
1: अच्छा, इंतज़ार कर रहे थे आप?
0: हाँ जी, हाँ जी, मैं जी देखते सुनते हमारा।
1: अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
0: दोस्ती फिल्म का मैम,
1: दोस्ती का सुनेंगे, ठीक है। और कुछ अपने बारे में बताएंगे?
0: ठीक है मैम, ठीक है, बढ़िया।
1: अच्छा, और कोई बात नहीं करेंगे आप, सीधा दोस्ती फिल्म का गीत सुनेंगे, हैं?
0: हाँ जी मैम जी।
1: चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, एक्चुअली मेरी कुरासिया जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, छत्तीसगढ़ से
1: जी मैडम, बताइए कौन
0: जी।
1: सा फिल्म निकला है।
0: शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है, क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल, और गाना है सरबती तेरी आंखों से, गाय किशोर कुमार, ब्लैकमेल।
0: ब्लैकमेल का
1: जी
0: जी
1: मैडम,
0: जी और अपने बारे में कुछ बताएंगे।
1: मैं ऐसी सेल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी से घर आता, घर आया तो
0: जी
1: घर आके थोड़ा सा पानी नहीं, 3-4 दिन से पानी नहीं खुला है मैडम, वो बड़ा पीछे तो फिर पानी दूर से लाया, फिर नहाया, और इसके बाद फिर वही आपके कई केंद्र में भी प्रसारण सुना, ईमेल किया, और आपके केंद्र में फोनिंग में जुड़ा, उर्दू सर्विस में भी ईमेल कर रहा हूँ।
0: अच्छा
1: जी
0: जी, चलिए शुक्रिया फोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी कल भी जुड़ूंगा सुबह 9 बजे। धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
0: संजय बोल रहा हूँ जी, बैजनाथ से।
1: बैजनाथ से संजय जी, क्या करते हैं आप? पहले तो बताइए, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: सड़क फिल्म का जी।
1: सड़क का, एक मिनट में देख लेती हूँ।
0: हाँ जी,
1: क्या करते हैं आप, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे?
0: मैं दुकान करता हूँ जी।
1: दुकान, किस चीज की दुकान है आपकी?
0: जूस की है, जूस की।
1: जूस की?
0: हाँ जी।
1: अच्छा, तो फिर आजकल तो रश रहता होगा ना जूस की दुकान में?
0: रश है
1: जी,
0: ये मंदिर में आते रहते हैं ना लोग जी।
1: हाँ हाँ, फिर रश रहता होगा ना गर्मियों में वैसे भी। ठीक, तो गाना कौन सा आप सुनना चाहते हैं?
0: सड़क फिल्म का रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर।
1: रहने को घर नहीं जी, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं?
0: बस ठीक है जी, मौसम ठीक हो
1: शुक्रिया
0: गया।
1: जी। जी जी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सर्दी अब आने वाली है, तो फोन जी जी तो फोन करने के लिए आपका शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का गीत।

सुश्रुत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारी। और जब तक कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं हम सुनवा रहे हैं आपको फरार फिल्म का ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी। नाम बताइए अपना।
1: जम्मू से केशव शर्मा जी। थैंक
0: केशव शर्मा जी, स्वागत है आपका
1: यू मैडम
0: जी। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी। जो चल रहा है वही सुंदर गाना है, बहुत अच्छा गाना है, इसी के चला दो।
0: शुक्रिया जी बहुत बहुत
1: तो साथ में कुछ साथी हैं, मैडम है मेरी, मेरी सुषमा रानी है, बच्ची है मेरी अंशु शर्मा है,
0: जी
1: साथी शर्मा है भाई सतपाल शर्मा है,
0: जी
1: तो कुछ दोस्त हैं मेरे यूपी से हैं विजय पांडे जी, और आपके हिमाचल से हैं गोल्डी भैया जी,
0: जी
1: और राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा।
0: अच्छा, ये सब आपके।
1: हाँ ये सब वो करते हैं फोन आपके स्टेशन में।
0: जी चलिए, शुक्रिया आपके लिए और आपके परिवार के साथ साथ आपके सभी दोस्तों के लिए हम सुनवा रहे हैं ये गीत। शुक्रिया फोन
1: ओके
0: करने
1: मैडम,
0: के
1: थैंक
0: लिए।
1: यू।

0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, लक्की बात कर रहा हूँ देहरी से। जी
0: लक्की जी कहाँ? देहरी से?
1: जी देहरी, देहरी कॉलेज।
0: जी, देहरी से। जी बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: कौन सी फिल्म बची है अभी?
0: अभी बच्ची है, मेरा नाम जोकर,
1: जी अच्छा,
0: और हाँ जी,
1: आगे अजनबी।
0: और अजनबी, अजनबी फिल्म। हाँ जी,
1: अजनबी सुना, अजनबी देखें अभी।
0: अजनबी का गाना हम सुना दें आपको। जी आप क्या करते हैं? अपने बारे में तो कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी मैं कुछ नहीं, फिलहाल तो फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कामयाबी हासिल हुई नहीं है।
0: चलिए मेहनत करते रहिए, ज़रूर कामयाबी हासिल होगी, है ना? रुकना नहीं है ना? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

रात का सन्नाटा है और यादों का पहरा है, इस मोड़ पर आकर दिल का हर जख्म गहरा है। जाने वाले को रोक लो कि अभी रात बाकी है, ये लम्हा गुजर गया तो सिर्फ मलाल बाकी है। तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। और जिन श्रोताओं की कॉल लगी है उनका शुक्रिया, और जिनकी नहीं लगी है उनसे हम कहना चाहते हैं कि इसी तरह आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आपकी भी कॉल ज़रूर लगेगी और बात होगी हमारे साथ और अपनी पसंद के गीत आप सुन पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी दोस्त नर्मदा शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।